मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हो चुके हैं

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता का विषय है उड़द के रोग एवं नियंत्रण। वार्ताकार हैं चंदा कुशवाहा।
1: इस पौधे में, उड़द के पौधे में कई अनेक तरह की बीमारियां लगती हैं, जो कि विषाणु जनित भी हो सकती हैं, फफूंद जनित भी हो सकती हैं और जीवाणु जनित भी हो सकती हैं। उनमें से कुछ मुख्य रोग जो कि यहाँ इस बिहार के क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो हमारे उड़द के फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला जो कि विषाणु जनित मोज़ेक है, यह विषाणु जनित रोग जो कि कीट द्वारा फैलता है। यह रोगी पौधे की पत्तियों पर पीला सुनहरा चकत्ता बनाता है और रोग की उग्र अवस्था में पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पुष्प एवं कलियां स्वस्थ पौधों की उपेक्षा कम लगती हैं एवं दाने सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, जिससे उपज बहुत प्रभावित होती है। इस रोग के प्रबंधन के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन अत्यंत आवश्यक है, जो कि एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। कीट को, जो कि इसके रोग वाहक हैं, उनका नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए थायोमिथोक्सिम या इमिडाक्लोरोपिड की 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लक्षण दिखते ही जहां तक संभव हो रोगी पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। खरपतवार का भी नियंत्रण करें, जिसमें कि यह विषाणु पैदा होते हैं और पाए जाते हैं। साथ ही बीजोपचार के उपरांत ही पौधों को लगाएं, जैसे कि यह पौधे स्वस्थ रहें और इनमें रोग

0: वाहकों का आक्रमण न हो। इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड की 4 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा मुख्य रोग है पर्ण चित्ती या लीफ स्पॉट। यह सर्कोस्पोरा कैनेसेंस नामक फफूंद द्वारा होती है, जिसके लक्षण अनेक छोटे छोटे भूरे गोलीय धब्बों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिसका किनारा गहरा भूरा होता है। यह धब्बा प्रारंभ में पत्तियों पर और बाद में डंठल और फलियों पर भी दिखाई देते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में संपूर्ण पत्तियां फलियां पकने से पहले सूख कर गिर जाती हैं। रोग प्रबंधन के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें। विगत वर्ष के संक्रमित फसल अवशेषों को नष्ट कर दें, जिसमें कि यह इस फफूंद के अंश पाए जाते हैं। प्रमाणित बीज का ही चयन करें और लक्षण दिखाई पड़ते ही कार्बेंडाजिम की 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। एक अन्य रोग जिससे कि उरद ग्रसित है, वह है पर्ण झुलसा या लीफ ब्लाइट। यह मृदा जनित रोग है जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई के संक्रमण से होता है। यह फफूंद स्क्लेरोशिया बनाकर फसल अवशेषों में तथा मृदा में सालों साल जीवित रहता है। इनके लक्षण प्रारंभ में पत्तियों पर जलीय धब्बों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो आगे चलकर गहरे भूरे और काले पड़ जाते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां झुलस जाती हैं और अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में सूखी रोगग्रस्त पत्तियों पर रुई की तरह फफूंद दिखाई पड़ता है। रोग प्रबंधन के लिए पौधों के बीच में संतुलित दूरी बनाए रखें। सघन बुआई से रोग की तीव्रता और प्रकोप बढ़ता है। बीजोपचार के बाद ही बीज का प्रयोग करें, जिसमें थीरम और कार्बेंडाजिम 2:1 के अनुपात में मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करें। संक्रमित पौधे अवशेषों को नष्ट करें और लक्षण दिखाई पड़ते ही कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार छिड़काव करें।
1: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना उरद के रोग एवं नियंत्रण के बारे में वार्ताकार चंदा कुशवाहा से। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर। अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या सभी धनों में बड़ा धन है। विद्या की महत्ता जितनी ही बताई जाए कम होगी। आज के समय में शिक्षा का महत्व तो और भी अधिक हो गया है। सारी दुनिया सिमट कर एक गांव की तरह हो गई है और इसमें ज्ञान का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य को अंधों के बराबर माना जाता है। विद्या सबसे ऊपर है। विद्या मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव और व्यक्तित्व का विकास करती है। प्रतिभा को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाती है। कुरी शिक्षा तो भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण के द्वारा मनुष्य को और खतरनाक बना देती है। आज की शिक्षा में हो क्या रहा है? व्यक्तित्व निखारने वाले, व्यवहारिक सभ्यता के सांचे में ढालने वाले और प्रतिभा को प्रखर बनाने वाले लक्ष्यों का समावेश नहीं हो पा रहा है। लोग बहुज्ञ हो जाते हैं लेकिन अहम मान्यता से संबंधित दुर्गुण उनके भीतर चले आते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले लोग हर किसी का हित करेंगे, ऐसा कभी सोचा जा सकता है? आज की जो शिक्षा है उसमें विद्या के समुचित समावेश की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, तकनीकी गैर तकनीकी दोनों ही क्षेत्रों में। भारत की शिक्षा का डंका बज रहा है। हम प्रबंधक बना रहे हैं।

0: हैं, इंजीनियरिंग के ज्ञानी तैयार कर रहे हैं, आईटी स्नातक बना रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हम जीवन मूल्य दे पा रहे हैं जिनसे वे स्व-केंद्रित दृष्टि से अलग हटकर राष्ट्रोन्मुखी तनाव युक्त जीवन से हटकर आध्यात्मिक बोधियों से भरा मस्ती भरा जीवन जी सके। शिक्षा के इतने संसाधनों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज के विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र हो गए हैं। मनुष्य की शिक्षा सभ्यता और सुसंस्कारिता सिखाए तभी वो सच्ची शिक्षा होगी। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती है। ये पक्ष आज उपेक्षित हो रहा है। पढ़ना करना और सोचना एक छोटी परिधि में सीमाबद्ध है। आत्मा कोई चीज है, इस दिशा में सोच कौन रहा है? जबकि सर्वाधिक जरूरत इसी की है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान यानी हम अपने आत्मस्वरूप में जैसे हैं उसमें और अच्छे और श्रेष्ठ हो सके, इसकी जरूरत पर बल नहीं दे पा रहे हैं। आज की शिक्षा में हमें विद्या के तत्वों को शामिल करने की जरूरत है। कहने का आशय यह है, भारत का एक औसत नागरिक, एक आम नागरिक बचपन से ही ऐसा कुछ सीखे जिससे उसमें नैतिक मूल्य, सुसंस्कार, सादगी, सभ्यता, राष्ट्रभक्ति आदि के गुण विकसित होकर उभर सकें। धन और ऐश्वर्य जीवन के लिए जरूरी हैं। आज के युग में उनका भी महत्व कम करके आका नहीं जा सकता। बिना धन के हम एक कदम चलने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यही होगा कि हम सिर्फ धन कमाएं? आज इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। और जितने भी मनीषी विचारक चिंतक हैं उन सब लोगों को सोचकर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शिक्षा में विद्या के गुणों का समावेश किया जा सके। आने वाले समय में विद्या के और भी महत्व को देखते हुए हमें इस दिशा में चिंतन करने की जरूरत है।
1: वाकई आज के जमाने में विद्या का अर्थ ज्यादातर लोगों ने इतना ही समझ रखा है कि विद्या अर्जित करेंगे और उसके बाद उस विद्या के अर्जन के बाद जितना अधिक हो सके धन कमाएंगे। और ऐसे में हमारी मानवता, हमारे सपने और हम खुद कहीं पीछे रह जाते हैं और धन कमाने के रेस में हम इतने तेज़ी से भागते हैं कि सब पीछे छूट जाता है। आप सुन रहे थे चिंतन मनन विद्या। स्वर सहयोग था कुसुम माकर दुबे का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आनंदली भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

प्रातःकाल अपनी छटा के साथ हमारे जीवन में इस दुनिया में दस्तक दे चुकी है। कहते हैं कि प्रातःकाल का आरंभ भक्ति भजन के साथ करना चाहिए। प्रातःकाल का आरंभ कल की दुविधाओं को छोड़कर, कल की चिंताओं को छोड़कर एक नए विचार के साथ आरंभ करना चाहिए। परंतु कई बार हमारे मन में और कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां होती हैं, हमारे मन में इतने उधेड़ बुन चल रहे होते हैं कि हम प्रातःकाल का आरंभ भी चिंताओं के साथ करते हैं, बेचैनियों के साथ करते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये आवश्यक हो जाता है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, उनसे विनती करें, उनसे कहें कि हे प्रभु, हम तुम्हारे शरण में हैं। हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों के सामने हारने मत देना, हे प्रभु अपना साथ कभी मत छोड़ना और हमारे अपनों से हमें बिछड़ने मत देना। आइए कृपा के सरोवर कमल से मनोहर कृष्ण के चरण को धर लें और उनसे कहें, प्रभु हमारे हर कष्ट को हर लो।

कृष्ण के शरण में हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है, और कभी जो हमारी समस्या के समाधान में विलंब हो तो हम उनकी भक्ति में डूब जाएं, हाँ उनकी भक्ति में डूब जाएं, अपने मन को चिंता मुक्त करें। और उसके बाद जब हमारा मन हर चिंता से मुक्त होगा, परेशानी से मुक्त होगा, तो उसके बाद शांति से बैठकर हमें विचार करना चाहिए अपने परेशानियों के बारे में। तो हमें हमारे कृष्ण कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखा देते हैं। इसलिए कभी कभी जो कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब कृष्ण के भजन में लीन हो जाइए, उनकी मुरली के धुन में खो जाइए, मगन हो जाइए मनोहर मोहन मुरली के धुन में, उनके भजन में, उनकी भक्ति में।

शाम की मुरली जब बजती है तो उनके भक्त मगन हो जाते हैं, और हम भक्त घनश्याम से बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि जैसे बादल सूखी धरती पर वर्षा करते हैं, वैसे ही आप अपनी कृपा, प्रेम और दर्शन की वर्षा हम पर सदैव कीजिए, क्योंकि ईश्वर के बिना, हमारे कृष्ण के बिना, या आप जिन्हें भी ईश्वर मानते हैं उनके बिना जीवन की रातें नीरस हो जाती है। उनके साथ आनंद केवल ईश्वर के साथ ही आता है, और अगर हम पाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा मन गहरी उदासी से भर जाता है।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं आइए अब सुने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। भेंटवार्ता का विषय है रेबीज। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर कुमार अमरेश।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील बीमारी पर, जिसे हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी क्यों हमें हो जाती है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इन तमाम बातों की जानकारियां लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने चिकित्सक एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कुमार अमरेश को। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेबीज नामक बीमारी होने के पीछे कारण क्या है।
2: रेबीज एक वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है जो अक्सर कुत्ते या कुत्ते जैसा कुछ जानवर के लार से प्रभावित होकर के बीमारी फैलता है। अगर कोई कुत्ता किसी आदमी को काटता है तो वो लार के द्वारा जो है शरीर में वायरस घुसते हैं और वो बीमारी पैदा कर सकते हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और जिस किसी को भी यदि हो जाता है तो उसमें लगभग 100% या 100% मरने का संभावना बनी रहती है।
1: जी, तो क्या सभी प्रकार के कुत्ते के काटने से होता है या सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के काटने से होता है?
2: सभी तरह के कुत्ते से काटने से तो नहीं है, जो स्ट्रीट डॉग जो बाहरी है कुत्ता उसमें ज़्यादा होने का संभावना होता है, और इस तरह से जो पालतू कुत्ता में संभावना कम रहता है। लेकिन पालतू कुत्ते को भी हम लोग जो है टीका दे करके हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं ये रेबीज होने से।
1: जी निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब अब इसके लक्षणों की अगर हम बातें करें तो अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी के होने की संभावना है तो कौन कौन से प्राथमिक लक्षण नज़र आएंगे?
2: रेबीज का जो लक्षण है वो उसका बहुत कम तरह का है, जैसे कि बुखार हुआ या माथा में सर दर्द हो गया या फिर कन्फ्यूज़न या विचार को सोचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कोमा भी हो सकता है। और एक स्पेशल लक्षण जो बहुत कॉमन है रेबीज के लिए, उसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिया बोलते हैं।
1: अच्छा, इसमें
2: या
1: क्या
2: इसका मतलब हुआ कि पानी देख करके वो भागना।
1: अच्छा,
2: मतलब पानी जहाँ दिखाई देता है पेशेंट उससे दूर भागना चाहता है, क्योंकि इस कंडीशन जो रेबीज बीमारी है जिसको भी होता है वो पानी पीने पर उसको गले में स्पाज हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। जब भी पानी पीने प्रयास करेगा वो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, इसलिए वो पानी देख के भागता है। और अगर किसी को हाइड्रोफोबिया होता है तो इसका मतलब है कि उसमें रेबीज होने की संभावना ज़्यादा है।
1: जी, तो किसी कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने के कितने दिनों के बाद ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है?
2: इसका 3 सप्ताह से 10 सप्ताह तक इसका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, लेकिन कभी कभी ये पहले भी हो सकता है और कभी कभी ज़्यादा दिन भी हो सकता है। 10 दिन में भी शुरू हो सकता है और कभी कभी 3 साल 4 साल में भी ये हो सकता है। इसका लक्षण एक तो ये मस्तिष्क से काटने वाला जगह की दूरी पर निर्भर करता है।
1: अच्छा।
2: यदि पैर में काटता है तो उसका लक्षण देर से आएगा, अगर हाथ में काटेगा तो लक्षण थोड़ा पहले आएगा, और यदि चेहरे में काटता है तो उसका बहुत जल्दी लक्षण आता है।
1: जी,
2: उसी हिसाब से उसका इलाज भी करना चाहिए कि जहाँ पैर में है दूरी और हाथ में दूरी है तो उसका उसी हिसाब से इलाज भी करना चाहिए।
1: जी, अब हम इसके इलाज की ही बातें अगर करें तो इलाज में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार इसका उपचार किया जा सकता है?
2: पहली बात है कि रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका उपचार से बेहतर है कि इसका बचाव किया जाए। और बचाव करने के लिए कि हम लोग दो तरह का बचाव कर सकते हैं, एक प्री एक्सपोजर दूसरा पोस्ट एक्सपोजर।
1: अच्छा।
2: यदि किसी आदमी को संभावना है कि वो कुत्ता काट भी सकता है, जैसे मान लीजिए कोई वेटनरी डॉक्टर है या वेटनरी काम करने वाले हैं या कहीं जू में काम करने वाले हैं, तो उसको पहले ही 3 सुई पहले ही ले लेना चाहिए ताकि जो अगर रेबीज होने की संभावना उसमें नहीं के बराबर हो।
1: ये वैक्सीन
2: बिल्कुल टीका। हाँ, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ही लिया हो और उसमें संभावना है कि वो रेबीज कुत्ता हो सकता है, रेबीज वाला कुत्ता हो सकता हो, तो उसको 6 सुई या 5 सुई ले करके, जिसमें कि जो हम लोग बाह में डेल्टॉइड रीजन में लेते हैं, और 5 सुई अलग अलग दिन में 0, 3, 7, 14, 28, 90 इस तरह का दिन में हम लोग लेते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि संभावना यदि बनती है कि बहुत ज़्यादा उसमें रेबीज का खतरा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन दवाई भी दे देना चाहिए ताकि वो जो है बीमारी का संभावना नहीं के बराबर हो, क्योंकि एक बार बीमारी का लक्षण आ जाने के बाद उसको बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है।
1: जी, यानी कि उसके संक्रमण काल के बीच में ही जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए,
2: पहले दिन ही सुई दे देना चाहिए, टीटारा सुई पहला दिन ही देना चाहिए।
1: जी, तो निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि किस प्रकार रेबीज फैलता है।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना रेबीज के बारे में भेंटवार्ताकार डॉक्टर कुमार अमरेश से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान की अगली कड़ी अनुराधा मराठे एवं श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बाल पुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

रामचरित मानस गान आपने सुना। अनुराधा मराठे एवं श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रातः 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत मौसम का मिजाज, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आनंद लीजिए सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। साथ ही सुनिए अंग्रेजी वार्ता अवेयरनेस टुवर्ड्स चाइल्ड राइट्स। वार्ताकार होंगी बेनी कुटियानी।

कर 30 मिनट पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर, रात 8 बजे और रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। सुगम संगीत का प्रसारण समय आज है प्रातः 9:30। कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय, प्रातः 7:52 पर कलाकार कुमारी सुवर्णा घोष। लोकगीत प्रसारित होंगे प्रातः 10:30 पर, कलाकार होंगे रेणु भारतीय। 1 बजे कलाकार विवेकानंद ठाकुर के स्वर में लोकगीत का आनंद लीजिए। शाम 7:10 पर कलाकार लक्ष्मी पांडे। बहनों का कार्यक्रम नारी लोक होता है दोपहर 12 बजे।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं 12:30 पर। 1:30 पर सुनिए ग्रामीण बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम घर आंगन। बंगला गान कार्यक्रम प्रस्तुत होगा 3:00। 3:20 पर समूह स्वर में देशभक्ति गीत होगा। 3:25 से 5:00 तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम होंगे। हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम 5:00 से।

शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम शाम 6 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सुनना ना भूलें रात 8:15 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आज रात 9:30 पर प्रस्तुत होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम रात के 10 बजे कलाकार होंगे अली अकबर खान राग रागश्री हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आपने सुना कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत तक मनोरंजन की पोटली एक एक कर खुलने वाली है और मनोरंजन की पोटली से निकलने वाले हैं ढेर सारी जानकारियाँ। बस एक एक कर आप तक ढेर सारी जानकारियां पहुंचेगी और हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एक छोटी पर बेहद ही जरूरी जानकारी के साथ। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं आपको बताने वाली हूं वक्त का हाल। वक्त का हाल बता दूं तो 7:02 हो चुके हैं और दिन है आज सोमवार का, तारीख है 6 जुलाई 2026। और बात करें सेकेंड्स की, मतलब आज के दिन की बात करें तो आज के दिन के इतिहास के बारे में भी हम बातें करेंगे, समाचार पत्रों की सुर्खियां भी आप तक पहुंचेगी और भी बहुत सारी बातें, मौसम का हाल, मौसम का मिजाज, रेल सूचना, सब आप तक एक एक कर पहुंचेगा। पर आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और साथ ही अपना, आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी इस बात की हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और इतने में तो हमें अपने दिन की शुरुआत कर ही लेनी चाहिए, और ख़ास तौर से जब मौसम गर्मी का हो और मौसम इतना प्यारा हो। जी हाँ, बाहर मौसम बहुत ही प्यारा है, एक बार आप बाहर निकलिए और मौसम का आनंद लीजिए। साथ ही आप जब गुड मॉर्निंग विक्रम शिला सुनते हुए मौसम का आनंद लेंगे तो दिन पूरा बन जाएगा, और आपका जब दिन बन जाएगा तो दिन में बहुत सारे काम भी बनेंगे और साथ ही मन भी लगा रहेगा। और हम अपने कार्यक्रम में जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन की भी बातें करते हैं, तो आइए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। आइए इनकी आवाज़ में सुने ब्रह्मानंद का लिखा ये भजन, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, पर फिलहाल आइए इस भजन का आनंद लेते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए।

हमारा मन समझता ही कहाँ है, और हम मन के काबू में इतने ज़्यादा आ चुके हैं या आ जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगती है। अब देखिए ना, मौसम का हाल किस तरीके से बदला है और बिगड़ा भी है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उसमें अगर हम दोष दें कि सिर्फ बाहरी चीज़ों की गलती है, हमारी गलती नहीं है, मतलब हम इंसानों की गलती नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर काबू नहीं पा पाए और इतनी ज़्यादा गलतियाँ की, एक के बाद एक गलतियाँ की, और शायद अभी गलतियाँ करते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से मौसम का हाल पूरी तरीके से बिगड़ गया है।

0: आप पंछियों के लिए घोंसले भी लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं और अपने तरफ से आप ये ज़रूर कोशिश करें कि आपकी वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। अगर मौका मिले और जगह पर्याप्त है तो आप पेड़ पौधे भी ज़रूर लगाएं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, जो पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इन बातों के साथ आप अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं। और कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अगर हर व्यक्ति अपनी ओर से थोड़ा भी कोशिश करना शुरू कर दे तो कितनी चीज़ें बदल सकते हैं। फिलहाल आज के मौसम की बात करें तो आज तो मौसम सुबह बहुत ही सुहावना है, बारिश भी हुई। और अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो आज अधिकतम तापमान रहने वाला है, कितना रहने वाला है अगर अधिकतम तापमान मैं आपको बताऊं, तो अधिकतम तापमान आज जो होगा वो होगा 34.5 डिग्री सेल्सियस। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहेंगे। और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश होने की संभावना है। बारिश तो हो भी चुकी है, दिन की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई है। और वहीं अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता की, तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। और अगर हवा की बात करें तो हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। और कुछ टाइम पे आप ये भी महसूस करेंगे कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और बारिश भी हो सकती है। तो अगर आप कहीं बाहर निकलें तो छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, छतरी लेकर अपने साथ ज़रूर जाएं, क्या पता अचानक बारिश हो जाए और फिर आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में बाधा पड़ जाए। तो अचानक आए बाधा को रोकने के लिए तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। और हम आगे के कार्यक्रम की तैयारी करते हैं और चलते हैं एक छोटे से अंतराल पर। अंतराल के उस पार हम आपको यहीं मिलेंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ बने रहिए। चलते हैं छोटे से अंतराल पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: बिल्कुल अपने वादे के अनुसार एक छोटे से अंतराल के इस बार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ट्रेनों के हाल के बारे में। कौन सी ट्रेन सही समय से चल रही है, कौन सी ट्रेन है आज लेट लतीफ़, और कौन सी ट्रेन का क्या हाल है जानते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप कहीं जाने वाले हैं, आपके कोई अपने आपके पास आने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। और ख़ास तौर से कहीं आप जाने वाले हैं तब तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा ट्रेन तो थोड़ी लेट चलेगी ही, हम आराम से घर से निकलेंगे और रास्ते में ट्रैफिक तो मिलता ही है। उसके बाद हम पूरे रास्ते घड़ी देखते रहते हैं, पूरे रास्ते परेशान रहते हैं और ट्रैफिक को कोसते रहते हैं, आसपास के लोगों को कोसते रहते हैं। सोचिए अगर

0: give. By investing in them, societies will have a bright future. The directive principles, which are fundamental in the governance of a country, state constitutional mandate to create condition to which children enjoy their rights. Thus, the state has a duty to protect children at all times for their physical and mental well-being. Justice Bhagavathi has rightly quoted, "The child is a soul with a being, a nature and capacities of its own, who must be helped to find them, to grow into maturity, into fullness on physical and virtual energy, the most breadth, depth and height of emotional, intellectual and spiritual being." The UN Convention on Rights of Children in the year 1989 has recognized various rights for their survival, development and protection. According to the convention, children have the right to have a name, nationality and care within the family, including good health care and nutrition. They also have a right to good preparation for life, which includes education, opportunities for games, sports and creativity. They have the right to be protected from mistreatment or exploitation and to have even special provisions if they are handicapped or orphans. Children have the right to associate with both their parents. Every father and every mother should make sure that children enjoy their rights to the brim. Parents' duty towards their children does not cease at the birth of babies. It is an ongoing obligation till they attain their youth. If we look around, we can see perhaps human babies are the most helpless things at birth. They need utmost care and protection of their parents to develop. And therefore, parents should make sacrifices to ensure that they get their rights at its full. As per the adults of the society, many may have to change their attitude towards children. A child is not the personal property of anyone. One cannot use them for any personal gratification. They are not mere things for kidding, but full-fledged human beings with intellect, emotions and feelings fit enough to face the newer challenges of the modern world. One should respect them, listen to them and treat them with kindness and human dignity. Do not shy away at times when you can extend a helping hand to them. It is the duty of everyone in the society to facilitate them with their basic needs such as dignity, physical protection, food, education and civil rights. No child shall be discriminated on the ground of race, gender, nation or origin. They shall have the freedom from physical, mental and emotional abuses. The government has a greater responsibility to guarantee the rights to the children. Strong laws should be made to stop child abuse and sharpen our enforcement mechanism to counter any unfortunate incident where a child's special rights are curtailed. Children are delicate, innocent, and dependent. They are not capable of making right decisions. They need good support from their family and society. They occupy an important portion of every population. The future of a nation depends highly upon the level of care provided to its young ones who are sensitive and receptive. They are the leaders and the future builders of our nation, and everyone has a responsibility to contribute to their all-round development. They are the real heroes in the making, and their privileges are not our concessions, but their natural rights. We, the elder generation, should respect the rights of the children and treat them well, and they are the ones who give us hope and aspiration when our days began to set. While Confucius, the great Chinese philosopher, was addressing a gathering, a group of naughty children came to him with a bird in their hands. They cupped the bird in such a way that the bird was not visible. They turned to the philosopher and asked, "Sir, we have a bird in our hands. Is it dead or alive? We want an immediate answer." Confucius was prompt in reply. He said, "The life of the bird is in your hand." The naughty children were ready to kill the bird or let it go, depending on Confucius' words. They could do neither. If we pause for a moment and think over the statement of Confucius, it might also make us realize that the future of our children is in our care. They are the building blocks of our nation, and therefore we need to protect them and ensure their rights and security. Let them be free birds, enjoying the goodwill of the gentry, and let them sing in full-throated ease in the journey of their childhood.
1: आप सुन रहे थे अंग्रेजी वार्ता अवेयरनेस टुवर्ड्स चाइल्ड राइट्स. वार्ताकार थे बेनी गुटियाइनी. हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला. मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा. आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं. और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें करेंगे और ढेर सारी जानकारियां आप तक पहुंचनी हैं. और आपको बता दूं, सबसे पहले तो आज दिन कौन सा है, तारीख क्या है. दिन है आज सोमवार का. जी हाँ, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. बहुत सारे बच्चों के ऊपर आज से परेशानी हो जाती है शुरू कि अब हफ्ते की शुरुआत, स्कूल जाना है. और जो बड़े हो चुके हैं उन्हें भी काम पे जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन परेशानी और ये जो मेहनत होता है ये हमारे जीवन का हिस्सा है. और बात करें आज तारीख की, तो तारीख है 6 जुलाई सन 2026. और समय का हाल बता दूं आपको तो 7:30 हो चुके हैं. और तारीख तो बताया आपको, 6 जुलाई है. और 6 जुलाई के इतिहास के पन्नों को पलटें. जी हाँ, आज के दिन में कौन कौन सी चीज़ें दर्ज हुई है आज की तारीख में, अगर उसे जाने तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में. आज ही के दिन 1885 में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है. 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहा था. 20,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला. 2006 में विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया था. 2008 में दक्षिणी मिस्र में 5,000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई थी. और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनका आज के दिन निधन हो गया था, जिनके काम, जिनकी बातें हालांकि आज भी हमारे बीच है. साल 2008 में इस दुनिया को अलविदा कह गए अमृतलाल बेगड़ प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी थे. 1894 में निधन हुआ प्रताप नारायण मिश्र का. प्रताप नारायण मिश्र हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक थे. 1986 में जगजीवन राम इस दुनिया को अलविदा कह गए. जगजीवन राम आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जिन्हें की आदर से बाबूजी भी कहा जाता है. चेतन आनंद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का निधन 1997 में हो गया था. 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह गए मणिकौल. मणिकौल फिल्म निर्देशक थे. ग्रैनविल ऑस्टिन पद्मश्री से सम्मानित अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार थे. इनका निधन साल 2014 में हो गया था. 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ. धीरूभाई अंबानी भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे. नौतम भट्ट भारतीय वैज्ञानिक, इनका निधन 2005 में हुआ था. 1954 में कार्नेलिया सोराब जी इस दुनिया को अलविदा कह गए. भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी. मान सिंह का निधन आज ही के दिन 1614 में हुआ था. मान सिंह बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार थे. अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन. 1958 में जन्म हुआ था मलाथी कृष्णा मूर्ति हाला का. भारत की पैरा एथलीट हैं. अनवर जलालपुरी यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर थे. इनका जन्म हुआ था 1947 में. 1935 में दलाई लामा का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु. देवगौड़ा जवरेगोड़ा कन्नड़ लेखक, लोकगीतकार, शोधकर्ता और विद्वान थे। देवगोड़ा का जन्म

1915 में हुआ था। 1906 को जन्मे दौलत सिंह कोठारी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1905 में जन्म हुआ था लक्ष्मीबाई केलकर का। लक्ष्मीबाई केलकर भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ, इनका जन्म 1901 में हुआ था। 1837 में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म हुआ। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर समाज सुधारक थे। अनिल माधव दुबे का जन्म हुआ था 1956 में। अनिल माधव दुबे भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री थे। और साथ ही बता दें आपको, आज विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाया जाता है। जब हम ग्रामीण परिवेश को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज के ही दिन चेतन आनंद का निधन हुआ था। चेतन आनंद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, निर्देशक थे। और अगर हम चेतन आनंद के कुछ फिल्मों के बारे में बात करें तो आपने टैक्सी ड्राइवर के बारे में सुना होगा, काला बाजार, इस फिल्म को कौन भूल सकता है, आखिरी रात, इसके साथ ही फंटूश जैसी ही रांझा तो इनकी सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है। और आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना सुनते हैं और गाने के उस पार मिलेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। आप इस गाने का आनंद लीजिए और हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ बने रहिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से अंतराल के इस बार हम हैं आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में अब हम जानेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में हो रही है। जी हाँ, हमने इतिहास के पन्नों को पलट लिया है, अब जानते हैं कि समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या कुछ समाया हुआ है, इस बारे में जानते हैं। तो आइए पलटते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। सीएम ने पटना एम्स का जायजा लिया, कई जरूरतों को पूरा करने की बात कही। एम्स को और जमीन मिलेगी, 200 बेड बढ़ेंगे, बर्न मरीजों के लिए स्किन बैंक होगा। डेडलाइन खत्म, ना कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हुई ना ट्रांसफर, सरकार के दावे धरे रह गए, छात्रों शिक्षकों का इंतजार बढ़ा। अयोध्या में इस्तीफों, जांच और नई व्यवस्था पर चर्चा, बैठक की जगह भी बदली गई, श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, चंपत राय समेत 3 ट्रस्टियों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार, चढ़ावा गिनती से मेरा संबंध नहीं रहा, कोषाध्यक्ष का दावा। सरकार के अगली खबर है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन को 17 जुलाई को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। यूपीएससी में एआई से डेटा प्रोसेस किया, पीटी से पहले 559 का फॉर्म खारिज हुआ। स्मृति शेष, पारधी जनजाति में जन्मी तीजनबाई छग की पंडवानी लोक कला शैली का चेहरा रही। पंडवानी की स्वर साधिका तीजनबाई नहीं रही, 11 रुपए एक समय के खाने के बदले रात भर महाभारत कथा सुनाती थी। तीजनबाई की दमदार आवाज, हाव भाव हर किरदार को जीवंत कर देता था। 1956 में पारधी अनुसूचित जनजाति में जन्मी तीजनबाई अपने नाना ब्रिजलाल को महाकाव्य महाभारत के प्रसंग सुनकर बड़ी हुई और उनसे प्रभावित होकर बिना ट्रेनिंग संस्कृत महाभारत के सभी 18 पर्वों को 21 दिनों में याद कर लिया। 13 साल की उम्र में मंच पर महाभारत की कहानियां सुनाने लगी थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस आदिवासी लड़की को गाने के लिए समाज से बाहर कर दिया गया था वह छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का वैश्विक चेहरा बन जाएगी। थिएटर कलाकार हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के सामने परफॉर्मेंस देने की सलाह दी। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। आपको बता दें, रविवार तड़के 3:15 पर रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, वे 70 वर्ष की थीं। दोपहर में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार से पहले उनके साथी कलाकार उनके साथ रहे। अगली खबर है, विक्रमशिला सैटेलाइट टाउनशिप मास्टर प्लान बनने तक नए निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। 4 प्रखंडों के 126 गांवों की जमीन की खरीद बिक्री पर जून 2027 तक रोक। जिले के 2 अनुमंडल के कई गांव दायरे में आएंगे प्रतिबंध। नाथनगर, शाहकुंड, सुल्तानगंज और नारायणपुर पर प्रखंड के 126 राजस्व गांवों की पूरी या आंशिक कृषि व आवासीय भूमि को इसके अंतर्गत फ्रीज यानी कि लॉक कर दिया गया है। 33 केवी लाइन में 2 बार फॉल्ट, बरारी समेत कई इलाकों में 6 घंटे बिजली गुल रही। बाबूपुर से बूढ़ानाथ व भूतनाथ तक व्यवस्थाओं का डीएम ने लिया जायजा। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। बरारी पुल घाट से हटेगा अतिक्रमण, एक ही तरफ लगेगी दुकानें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शहर में आयोजित होगा राष्ट्रीय नाट्य मंचन। डॉक्टर चैतन्य करेंगे निर्देशन। अकादमी ने डॉक्टर चैतन्य प्रकाश को सौंपी नाटक की कमान। 15 जुलाई से होगा मंचन। भागलपुर जिले में भी पेपरलेस रजिस्ट्री की तैयारी। मोबाइल पर आएगा सेल डीड पेपर। 15 के बाद बदल जाएगी व्यवस्था। टोकन नंबर लेकर आना होगा रजिस्ट्री कार्यालय। बड़ी समस्या। सबौर रोड से फतेहपुर जाने वाले मार्ग पर 30 मीटर तक सड़क पर जमा है पानी। एक साल से नाले के पानी के बीच से गुजरने को विवश है मोहल्लेवासी। बारिश से टेलीफोन पोल में दौड़ा करंट। सुजागंज कार्मिक संघ ने बिजली विभाग व बीएसएनएल के से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कला एवं संस्कृति विभाग और भागलपुर संग्रहालय की ओर से लगाई गई लोक कला प्रदर्शनी। 50 से अधिक कलाकारों ने सजाई मंजू शाह हटिया। कला प्रेमियों ने हौसला बढ़ाया, खरीदारी की। श्रावणी मेला 24 दिन अब शेष। जमीन मिली तो पहली बार गंगा घाट से दूर बाइक पार्किंग स्थल भी बनाए जा सकते हैं। ट्रैफिक प्लान 4 लेन पर बनेगी पार्किंग। 2 ट्रैफिक थाने खुलेंगे। बांका से बालू लाकर मिट्टी की मात्रा हटाकर ग्राहकों को अधिक दामों में बेच रहे। एनएच पर रात में बालू की धुलाई। 20 अवैध बोरिंग संचालकों को दिया गया नोटिस। बिहार पुलिस में एसआई के 150 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट को मौका, 9 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करें। बड़े शेयरों पर दबाव, छोटे शेयरों में लगातार 3रे महीने तेजी। निजी बैंक फार्मा सेक्टर सबसे मजबूत। निफ्टी लगातार 2रे महीने 1200 अंकों के दायरों में सिमटा। बाजार की चाल चुनिंदा सेक्टर तक सिमटी। इस साल अब तक निफ्टी 9% टूटा, इसको स्मॉल कैप 6% उछला। निजी बैंक फार्मा के 80% से शेयर मजबूत। इस हफ्ते 2 मेन बोर्ड सहित 4 आईपीओ जुटाएंगे 1,459 करोड़ रुपए। क्रूड ऑयल, खोपरा और कॉफी सस्ते पर चाय पत्ती अब भी जेब पर भारी। सस्ते क्रूड से पैकेजिंग लागत 14% घटी पर महंगे पाम से साबुन तेल फार्मों पर बोझ बढ़ा। राहत, क्रूड 19% टूटने से पैकेजिंग 14% तक सस्ती हुई। पेय पदार्थों में चाय पत्ती 3 महीने में ही 3% महंगी हो गई। बड़ी राहत ये कि चॉकलेट बेवरेज कंपनियों को लगी लॉटरी। क्विक कॉमर्स को चुनौती। डीमार्ट रेवेन्यू ग्रोथ घटकर 15%, बिकवाली का रिस्क। देश में बाहर खाने से ज्यादा घर मंगाने का क्रेज। मेट्रो से लेकर छोटे कस्बों तक फैली फूड डिलीवरी की क्रांति। 8.5 लाख करोड़ के फूड मार्केट में क्लाउड किचन बने मुनाफे की मशीन। चाय, कॉफी और स्नैक्स क्लाउड किचन के लिए 4.2 लाख करोड़ रुपए के नए हॉटस्पॉट बन रहे। रिकॉर्ड बिटकॉइन जमा होने से बड़े क्रैश की आशंका। अब बात खेल की। राउंड ऑफ 16 में पिछली रन अप टीम फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराया। 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की। फ्रांस ने पहली बार लगातार 5 मैच जीते। फ्रेंच टीम का अब 9 जुलाई को मोरक्को से होगा सामना। पराग्वे के हिंसक खेल के सामने फ्रांस का आक्रामक पलटवार। 150 वर्ल्ड कप गोल फ्रांस के। ऐसा करने वाला ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना के बाद चौथा देश बना। 10 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच जीते हैं फ्रांस के मैनेजर डीडियर डेस्चैम्प्स ने, जो सबसे ज्यादा रहा है। महिला टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जारी, 22वीं बार विश्व विजेता बना। फेरबदल, विंडीज इंग्लैंड दौरे के लिए टीम घोषित। 3 साल बाद फिर पाक टेस्ट टीम से कप्तान बने बाबर। 16 में से 12 टेस्ट हारने वाले मसूद की कप्तानी छीनी। टेनिस में छठवीं जीत के साथ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने विंबलडन। जोकोविच ने फेडरर को पीछे छोड़ा। एलेक्जेंडर जेवेरेव 25वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 16 में पहुंचे। वनडे में 4 साल बाद आमने सामने होंगी जिम्बाब्वे व बांग्लादेश की टीमें। मेजर लीग क्रिकेट में नाइट राइडर्स को हराकर टॉप पर पहुंचा न्यूयॉर्क। श्रीलंका ए को 10 विकेट से शिकस्त दी। गुरनूर ने 10 विकेट लेकर दावा ठोका। इंडिया ए ने सीरीज जीती। यूरोप में गर्मी से 11 लाख करोड़ का नुकसान। अगले साल 34% आबादी पानी को तरसेगी। यूरोप के 23 देशों में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव। रिसर्च मॉडल के चौंकाने वाले खुलासे। पीओके में शांतिपूर्ण रैली पर पाक सेना ने गोलियां बरसाई। एक की मौत, कई जख्मी। पीओके में चुनाव बहिष्कार। विदेशों में भी विरोध तेज। सीबीएसई के नए नियम। भाषा की पढ़ाई ओरल फर्स्ट की अवधारणा पर अब सिर्फ लिखने से नहीं बोलने और सुनने के भी नंबर मिलेंगे। ओडिशा में जगन्नाथ धाम की अनूठी परंपरा। 365 दिन बाद जमीन से निकला खास फुलोरी तेल। यह रथ यात्रा से पहले शुरू हुआ उपचार व श्रृंगार। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर। खगड़िया के कोसी पूर्णिया में कनकई और किशनगंज में कनकई उफान पर। खगड़िया किशनगंज में 6-6 नदी में समाए। खगड़िया किशनगंज में 6-6 घर नदी में समाए। पूर्णिया में 100 पर मंडराया खतरा। किशनगंज में कटाव जारी। उत्तराखंड में 17 साल बाद खिमलोगा दर्रा फतह। 17,260 फीट ऊंचाई पर स्थित है बर्फीला दर्रा। चीन में 64 घंटे बिना रुके रोबोट्स ने 17,625 टैबलेट बनाई। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और कार्यक्रम को समाप्त करें इससे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं। को हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही आपको हमारे आज के कार्यक्रम से बहुत सी बातें जानने को सीखने को मिली होगी। तो हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर और जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ध्यान और साथ ही अपने आसपास का भी ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी समय बिताते हैं वहां की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। अगर आप अपने आसपास की जगह को साफ रखते हैं तो न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा समाज स्वस्थ बनता है, साफ बनता है। साथ ही हमारे समाज की तस्वीर भी बदलती है, सुधरती है। और साथ ही मौसम काफ़ी सुहाना है तो मौसम का आनंद लीजिए और जहाँ भी बाहर जाइए तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए और अपने साथ एक छाता भी लेकर जाइए। छाता लेकर जाएंगे तो आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और अगर आप अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप को प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं और दूसरी बात ये कि आपके पैसे बचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आप जब बाहर से किसी प्लास्टिक की बोतल को ख़रीदते हैं, उसे पानी पीते हैं, तो वो बोतल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता। और ऐसे में हम अनजाने में एक और प्लास्टिक का एक टुकड़ा कह सकते हैं कि हम प्रकृति को देते हैं और जो कि उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने में ना जाने कितने हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके आप उतना ही कम प्लास्टिक का उपयोग कीजिए। आप बाहर जाइए तो अपने साथ कोई बैग लेकर जाइए, जूट का बैग लेकर जाइए, कपड़े से बने बैग लेकर जाइए। बाज़ारों में भी मिलते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी ओर से प्रकृति को थोड़ा फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं और साथ ही आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, ये भी पाया गया है कि अब हमारे शरीर में, जी हाँ, मानव के शरीर में भी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण आने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हमारे पर्यावरण में घुल गई है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आज के मौसम का आनंद लें, जीवन का आनंद लें और साथ ही अपने सपनों के साथ अपने जीवन की उड़ान को आगे भरते रहें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ संदेश।
1: सुना है तुमने तिलका मांझी का नाम? सुना है
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश त्रिश और बाल्टी बॉय।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा का। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
0: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में साइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
7: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया।

का निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख

0: लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजुर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब पांच बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैनुल अक्वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालांड ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ ना कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैनुल अक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी ले ख्याल, इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मस्नूई ज़हानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ

0: क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है, थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के लिए योजना की पहली किस्त की राशि जारी की। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि अगले 3 महीने के लिए जारी की गई है। इस राशि में राज्य सरकार का भी हिस्सा मिलाया जाएगा, जिससे पंचायतों का विकास आसानी से होगा। गौरतलब है कि यह राशि पूर्व में 9 महीने के लिए निर्धारित अंतरिम बजट से जारी की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी। कल भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिलेगा।
1: दुख घड़ी में आपके हम लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। जो भी लोग इसमें ओवर एक्ट किए हैं या जो भी लोग जो पदाधिकारी में इसकी संलिप्तता है, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई विद्वेष की भावना नहीं रखिए। पूरी तरह से हम इस घटना हुई है उसमें हम सब लोग आपके साथ साथ मरमाहत हैं।
0: इधर इस घटना के मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर पर मामला दर्ज किया है। पटना साइबर थाने के DSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत और तथ्यहीन पोस्ट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक पोस्ट को हटाया गया है। राज्य सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में बनने वाले 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। नगर विकास विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह रोक अगले वर्ष 30 जून तक प्रभावी रहेगी। विभाग के अनुसार पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में प्रस्तावित टाउनशिप में पहले ही जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। राज्य में गन्ना किसानों को आधुनिक खेती करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए की गन्ना यांत्रीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के बीच 3218 आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही 80 नए यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक में न्यूनतम 7 यंत्र अनिवार्य रूप से रहेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि आधारित स्टार्टअप से कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य और मधुमक्खी पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों की जानकारी दी जाएगी। राज्य में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की तैनाती की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने बताया कि राज्य के 11 जिलों में चल रहे सभी 61 वन स्टॉप सखी केंद्र पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पटना सहित 27 जिलों में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कोई स्थान तय नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अल्पावास गृह बंद हो गए हैं उन स्थानों पर शक्ति केंद्र के नाम से अल्पावास गृह खोले जाएंगे। राज्य में पंचायत स्तर पर मछली उत्पादक समितियों का गठन किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि सहकारिता विभाग से मंजूरी के बाद पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अशोक ने कहा कि इस समिति में पंचायत के सभी मछली उत्पादकों को शामिल किया जाएगा और समितियों के माध्यम से ही मछली की खरीद बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत मत्स्य सहयोग समिति का उपनियम बनाया जा रहा है, इसी के आधार पर समिति का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार इसके पूर्व सभी प्रखंडों में एक एक स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के लिए किया गया है। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशाला और अनुभवी शिक्षक होंगे। इसके साथ ही छात्रों को 9वीं और कक्षा से ही नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने आधार से नकद निकासी के दौरान 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। निगम के अनुसार नए नियम के साथ 5,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी सत्यापन के बाद पैसा निकाला जा सकेगा। इससे पहले नकद निकासी के लिए निर्धारित सीमा तक राशि निकालने के लिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन ही पर्याप्त था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने अरवल, बांका, गयाजी, नालंदा और नवादा समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
4: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। ज्यादातर स्थानों का तापमान 33 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल समेत वर्ग 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज से 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। समग्र राज्य आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इधर प्रदेश में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह राम मंदिर परिसर में ही होगी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरह पंचायत के उदा गांव से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगों को मोबाइल सिम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से कई कंपनियों के 47 सिम कार्ड बरामद किए हैं। किशनगंज पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 516 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं जिले के कोचा धामन थाना क्षेत्र से मवेशी व्यापारी से हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के परसोथुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुकानों में चोरी करने के आरोपित मोहम्मद अजीम को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को भी जब्त किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पूर्णिया और कटिहार जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से प्रतिभा खोज अभियान के तहत 350 खिलाड़ियों का चयन किया है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक आयोजित चयन शिविर में 12 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महानिदेशक ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और तीरंदाजी समेत अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या अधिक होगी तो उन स्थानों पर नए एकलव्य केंद्र खोले जाएंगे। इस अभियान के अगले चरण में जमुई, रोहतास, पश्चिम चंपारण और कैमूर के जनजातीय बहुल क्षेत्र में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, पटना एम्स को 24 एकड़ जमीन मिलेगी, 200 बेड बढ़ेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, बांकीपुर विधानसभा सीट पर राजद के साथ कांग्रेस भी जता रही दावा, अब शीर्ष नेतृत्व सुलझाएगा पेच। दैनिक भास्कर ने अयोध्या राम मंदिर पर लिखा है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, चंपत राय समेत 3 ट्रस्टियों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में इको टूरिज्म के लिए 70 जगहें बनेगी पर्यटकों की पसंदीदा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर झील और राजगीर बनेंगे प्रमुख आकर्षण। आज अखबार का शीर्षक है, 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड से बदलेगी पटना की तस्वीर, वेंडिंग जोन से न्यू मार्केट तक होगा कायाकल्प, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, पटना, पालीगंज, मोकामा और नौबतपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस डिपो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत बिहार के लिए 1663.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
6: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
5: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की मिलीजुली आवाजों में गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार हिमेश रेशमिया, फिल्म नमस्ते लंदन।

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है अंश द डेडली पार्ट फिल्म से। संगीतकार नदीम श्रवण, गीतकार समीर, गायक कलाकार कुमार सानू।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर अजय राय। आरंभ में आइए सुने एक रंग से लिया गया ये भजन।

0: सुगम संगीत आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय राय के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम से पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में

0: तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
3: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
4: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
3: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
4: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
3: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
4: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
3: आकाशवाणी के

0: பெருமான்.
1: श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है मनचली फिल्म से। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज मुकेश की।

अब संगीतकार राहुल देव वर्मन का गाना भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है परिचय, कलमबद्ध किया है गुलजार ने।

अगले गीत, अगले गीत के लिए सुनिए आशा भोसले को इजाजत फिल्म में, गीतकार गुलजार, संगीत राहुल देव वर्मन का।

श्रोताओं अब सुनिए लेकिन फिल्म के इस गीत को। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, अल्फाज हैं गुलजार के, संगीत तैयार किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं रेणु भारतीय। आइए आरंभ में सुने देवी गीत।

0: लोकगीत आपने सुना रेणु भारतीय के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही

0: आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आपने सुना फिल्म सैम बहादुर में। गीतकार गुलजार, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बवाल से लिया है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर का गीत है और संगीतकार हैं मिथुन।

0: गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की आवाज़ों में। गीतकार सईद कादरी और संगीतकार थे मिथुन। आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश,
3: क्रेश
1: और बाल्टी बॉय।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
5: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है नई फिल्मों से कार्यक्रम में। तेरे इश्क में इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह के स्वर में। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार हैं AR रहमान।

कार्यक्रम के अंत में हक फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। मालिनी अवस्थी, ज्योतिका टांगरी, विद्युत ज्योति मोहन और साथियों की आवाजों में। गीतकार कौशल किशोर और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। थोड़ा इंतजार करें।

नमस्कार श्रोताओं, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस संवेदनशील रचनाकार को जिसने फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना बल्कि उन्हें समाज, संवेदना और यथार्थ की आवाज बनाया। एक ऐसा नाम दोस्तों जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी, नई दृष्टि दी और ये साबित किया कि सिनेमा केवल सपनों की दुनिया नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों का आईना भी हो सकता है। पता है दोस्तों, आज चेतन आनंद जी की पुण्यतिथि है। तो जब भी भारतीय समानांतर सिनेमा, यथार्थवादी सिनेमा या संवेदनशील फिल्म निर्माण की बातें होती है ना, तो चेतन आनंद जी का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वे केवल एक निर्देशक नहीं थे बल्कि एक विचार थे, एक दृष्टि थे, एक ऐसी रचनात्मक चेतना थे जो अपने समय से बहुत आगे वो चल रही थी। उनकी जो चेतना थी, तो 3 जनवरी 1915 को लाहौर में जन्मे चेतन आनंद एक शिक्षित, संवेदनशील और साहित्यिक परिवेश से जुड़े व्यक्ति थे। तो इनके बारे में आज हम बातें करेंगे, ढेर सारी बातें हम इनके बारे में करेंगे और इनके फिल्मों के गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच एक गीत सुन लेते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आखिरी खत से। गायिका लता मंगेशकर, गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार खय्याम साहब।

आज के गुलदस्ता में हम बातें कर रहे हैं चेतन आनंद की, जो एक बहुत ही जाने माने निर्देशक रहे, अभिनेता भी रहे और निर्देशक ऐसे जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे बढ़ कर के चीज़ों को सोचा और उसे साकार रूप दिया सिनेमा के पर्दे पर। उस समय कोई सोच भी नहीं पा रहा था और उन्होंने उसकी एक परिकल्पना की और फिल्म बनाई, जिसकी बातें हम आगे करेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं नीचा नगर फिल्म की बातें कर रही हूँ, तो बातें हम उसके बारे में आगे करेंगे। लेकिन अभी जान लें कि 3 जनवरी 1915 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था, चेतन आनंद जी का। तो वो एक शिक्षित, संवेदनशील और साहित्यिक परिवेश से जुड़े व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कला, साहित्य और समाज के प्रति उनकी गहरी समझ उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि चेतन आनंद भारतीय सिनेमा के उस गौरवशाली परिवार के बड़े स्तंभ थे जिसने हिंदी फिल्मों को 3 अनमोल रत्न दिए। ये थे चेतन आनंद, देवानंद और विजय आनंद। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी शैली में भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया, लेकिन चेतन आनंद का रास्ता सबसे अलग था। वे भीड़ में चलने वालों में नहीं थे, वे नए रास्ते बनाने वालों में थे। साल 1946 में आई उनकी फिल्म नीचा नगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म सामाजिक विषमता और वर्ग संघर्ष की कहानी थी। उस दौर में जब भारतीय सिनेमा मुख्यतः मनोरंजन प्रधान फिल्मों पर केंद्रित था, चेतन आनंद ने समाज की सच्चाइयों को पर्दे पर उतारने का साहस दिखाया और यही फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनी। पता है, नीचा नगर फिल्म को फ्रांस के प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। ये उपलब्धि आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण अध्यायों में गिनी जाती है। तो बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस बीच एक और गीत सुनते हैं, फिल्म हंसते जख्म से। ये उन्हीं की फिल्म है, चेतन आनंद जी की। तो गायिका लता मंगेशकर, गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

दोस्तों, आज हम चेतन आनंद के बारे में बातें कर रहे हैं। गुलदस्ता में उन्हें एक सुरमई श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताएं कि चेतन आनंद जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे मनुष्य के भीतर झांकना जानते थे। उनकी फिल्मों में चमक दमक कम और जीवन की सच्चाइयाँ अधिक दिखाई देती थीं। वे भावनाओं को सजाते नहीं थे, उन्हें जीते थे। सन 1964 में आई फिल्म हकीकत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म केवल युद्ध की कहानी नहीं थी दोस्तों, बल्कि उन सैनिकों के जज्बातों की कहानी थी जो देश के लिए

अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आज भी जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ये गीत सुनाई देता है तो हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। इस गीत के पीछे चेतन आनंद जी की वही संवेदनशील सोच थी जो सैनिकों के बलिदान को केवल घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना के रूप में देखती थी। उनकी फिल्मों में प्रेम था लेकिन सती नहीं, देशभक्ति थी लेकिन शोरगुल नहीं, संवेदनाएं थीं लेकिन बनावटी नहीं था। दोस्तों पता है हीर रांझा जैसी फिल्म में उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया, पूरी फिल्म संवादों के बजाय कविता और शायरी के रूप में प्रस्तुत की गई। ये जोखिम भरा कदम था लेकिन चेतन आनंद कला में नए प्रयोग करने से कभी नहीं डरते थे। उनकी फिल्मों का संगीत भी हमेशा उनकी संवेदनशीलता का विस्तार रहा। शब्द, संगीत और दृश्य, इन तीनों का ऐसा संतुलन उनकी फिल्मों में दिखाई देता है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बस जाता है। तो इस बीच सुन लेते हैं हीर रांझा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आज़मी का गीत और संगीतकार हैं मदन मोहन।

दोस्तों, सफलता और संघर्ष दोनों जीवन का हिस्सा हैं। चेतन आनंद जी के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि सच्ची कला वही है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो केवल एक फिल्म निर्देशक को नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार को नमन कर रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा को सोचने, महसूस करने और समाज से जुड़ने की नई दृष्टि दी। उनकी बनाई फिल्में आज भी हमें ये सिखाती हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को समझने और बदलने का एक सशक्त माध्यम भी हो सकता है। चेतन आनंद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके विचार और उनकी फिल्में आज भी जीवित हैं। हर बार जब हकीकत फिल्म का कोई दृश्य आंखों के सामने आता है, हर बार जब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों की गूंज सुनाई देती है, हर बार जब भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा होती है, चेतन आनंद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का हकीकत का यही।

0: तो दोस्तों, आज के गुलदस्ते में हमने बातें की चेतन आनंद साहब की, जो जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो आज जब हमने उनको याद किया तो हम केवल एक निर्देशक को याद नहीं कर रहे थे, हम उस संवेदनशील मन को याद कर रहे थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। हमने उस रचनाकार को आज याद किया जिसने ये साबित किया कि सिनेमा समाज का आईना भी हो सकता है और समाज की आवाज़ भी। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। तो दीजिए अपने रेडियो दोस्त अणिमा को विदा, और फिर से वही बात कि गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाए रखिए।
1: तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले।
0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, अभी हम वन महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं। हर साल भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यह एक सप्ताह का वृक्षारोपण उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पेड़ों के प्रति प्यार तथा वनों के संरक्षण के प्रति भावना जगाना है और पर्यावरण को हरा भरा रखना है। इसे मनाने की शुरुआत 1950 के तत्कालीन भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री KM मुंशी द्वारा की गई थी। इसे मनाने का उद्देश्य अधिकाधिक पौधे लगाकर वनों की कटाई से होने वाले नुकसानों की भरपाई करना है। बहनों, पेड़ हमारे जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। यह महोत्सव हमें प्रकृति से संतुलन बनाने की सीख देता है, ताकि हम अधिकाधिक फलदार और औषधीय पौधे लगाएं। इस सप्ताह के दौरान बहुत से जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं तथा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाता है। तो आइए बहनों, अधिकाधिक पौधारोपण कर इस सप्ताह को हम सार्थक बनाएं। बहनों, अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: बहनों, अंतराल के बाद वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में। बहनों, गर्मी की तीव्रता के बाद पड़ने वाली फुहारें जैसे हमारे लिए राहत का संदेश लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं अनायास ही हमारे मन को सोचने के लिए विवश करती हैं, चाहे वह आधी रात का समय ही क्यों ना हो। मन है कि यादों में डूबने

0: इस गीत के बाद बहनों आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। आज की इस वार्ता का विषय है जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं सुधा धीर। बहनों, जनसंख्या नियंत्रण आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और बेहिसाब बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें इस विषय पर सोचना होगा और इसमें हम महिलाओं की क्या भूमिका है, इस विषय पर आइए इस पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानते हैं।
1: आधुनिक भारत में जनसंख्या की समस्या का प्रश्न बड़ी तीव्रता से अनुभव किया जा रहा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत तीव्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अतीत की ओर देखें तो पौराणिक कथाओं में 100 पुत्रों की माता का वरदान मामूली बात थी। महिलाओं को दूधों नहाओं पूतों फलों का आशीर्वाद मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में यह वरदान अभिशाप हो गया है। तभी तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार जिसे सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला कहा जाता है, उसे सजाने संवारने और सुखी बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज 21वीं सदी में नारी सशक्तिकरण के युग में जनसंख्या वृद्धि की समस्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है। पहले अधिक जनसंख्या को जनशक्ति के रूप में लिया जाता था, आज वही जनशक्ति अभिशाप बन गई है। इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष करोड़ों की गिनती में वृद्धि

देश के कर्णधारों एवं महिलाओं का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत प्राकृतिक वैभव का देश है, पर्वतीय स्थल भी बहुत हैं, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या थोड़ी है। तब भी देश को कभी कभी खाद्य संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि एक ज्वलंत समस्या है, महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण सवाल है। इसके निराकरण के लिए उन्हें सजग एवं सशक्त होकर सामाजिक क्रांति लानी होगी। अब सारे संसार में जनसंख्या वृद्धि को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत में ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण विश्व में है। भारत में कुछ शिक्षित एवं प्रतिष्ठित वर्गों में यह जनसंख्या की आबादी थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन सर्वहारा वर्ग में जितनी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं होती है जिनकी, वहाँ भी बच्चों की कतारें खड़ी दिखाई देती है और सभी नंगे सभी भूखे। भारतवर्ष में अशिक्षा एवं अज्ञानता की वृद्धि के कारण ही जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं पा रही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के अनेक प्रयास बनाए जा रहे हैं जो वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि से हानिकारक नहीं, लेकिन खेद की बात है कि अज्ञानता के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यह समझ नहीं पाती कि वो स्वयं अपने पैर में कुल्हारी मार रही हैं। इसलिए अधिक संतानें उनके आय का साधन होती हैं, चाहे वह अपने बच्चों को सुयोग्य भरण पोषण न कर पाए, लेकिन वह उनको अपने कमाई का साधन समझती हैं। दूसरी ओर धार्मिक संकीर्णता अंधविश्वास के कारण जहाँ यह धारणा बलवती है कि पुत्र प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, इस क्रम में कई परिवारों में पुत्र प्राप्ति की आशा में कई पुत्रियां का जन्म हो जाता है, जिससे जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है। स्वयं एक माँ होकर भी महिलाएं बहुत बार इसका विरोध करने में असफल रहती हैं, क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं है। साथ ही बाल विवाह की प्रथा भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव आदि की समस्याएं भी सामने आती हैं। देश के नगर और ग्राम में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं नर्सों को भी रखा गया है, ताकि वे महिलाओं को प्रशिक्षण दे सके। दो बच्चे पैदा करने और सुखी परिवार का जीवन व्यतीत करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वैज्ञानिक साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवश्यकता यह है कि लोगों में आर्थिक विषमता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति पैदा की जाए। साथ ही महिलाएं जागरूक होकर परिवार में सभी को बताएं कि छोटे परिवार से जीवन सुखी रहता है और संयम करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, आयु भी बढ़ती है। इसलिए परिवार नियोजन के आर्थिक, पारिवारिक एवं सामाजिक पक्षों पर समय समय पर संगोष्ठी, सेमिनार आदि के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर जनसंख्या वृद्धि का विरोध करते हुए छोटे परिवार की आवश्यकता पर बल दें। यदि यह वृद्धि इसी तरह होती रही तो 500 वर्षों के पश्चात विश्व की जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि मानवों को रहना तो दूर, पृथ्वी पर खड़े होने का स्थान नहीं मिलेगा। डॉक्टर चार्ल्स ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पे बल देते हुए कहा है कि 1,000 पौंड प्रतिवर्ष आय वाले एक ऐसे 4 बच्चे वाले व्यक्ति का जीवन स्तर एक समान आदमी वाले कुंवारे व्यक्ति के जीवन स्तर के 1/5 भाग के समान हो। विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य किए हैं, उससे मृत्यु दर में कमी आई है। यदि महिलाएं सजग होकर इसका विरोध नहीं करेंगी और यदि जनसंख्या में इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही तो एक दिन कहीं ऐसा न आ जाए कि मनुष्य को घास पत्ते खाकर गुजारा करने पड़े या मनुष्य मनुष्य का भक्षण करने लगे। मानव श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए उसे समझना चाहिए कि उसकी यह अज्ञानता, अकर्मण्यता उसके वंशजों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। कहते हैं एक महिला शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। आज महिलाओं को यह समझना होगा कि भौतिकवादी युग में बढ़ती जरूरतें, बढ़ती महंगाई बड़े परिवार की कमर तोड़ देती है। इसलिए इन परिवारों में जीवन स्तर तो गिरता ही है और अनैतिकता एवं शोक तथा हीन भावनाओं का भी विकास होता है। सभी के भरण पोषण की व्यवस्था करना लगभग असंभव है, फलतः कितने ही बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। परिवार मानव जीवन की वह संस्था है
जिसमें जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को सम्मान, सुख, शांति एवं सुविधा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार गांव में दो ही सिर्फ रह गए हैं। नगरों में संयुक्त परिवार बहुत कम है, पर यहां प्रश्न उठता है जनसंख्या वृद्धि का। हमारे यहां जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में सुविधाएं बहुत कम है। परिवार का संबंध समाज से है और समाज का संबंध राष्ट्र से है। यदि राष्ट्र संपन्न बनाना है तो परिवार को संपन्न बनाना होगा। यह कार्य सरकार के साथ साथ देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं द्वारा संपन्न होना है। प्रजातांत्रिक देश में जितना उत्तरदायित्व सरकार

0: जो महिलाएं धर्म एवं कुरीतियों कुप्रथाओं के नाम पर परिवार नियोजन का विरोध करती हैं, वह देश से पहले अपनी ही शत्रु हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने बच्चे को न तो शिक्षा दे पाएंगी न भरपेट भोजन। ऐसी स्थिति में वे संपूर्ण मानव जाति के शत्रु होंगे। यह महिलाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। परिवार को संतुलित बनाए रखने के लिए संयम के साथ साथ परिवार नियोजन के साधन का प्रयोग करना चाहिए। यह उनका मानव धर्म है और मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी गैर सरकारी प्रयासों का हम स्वागत करें। आपातकाल में परिवार नियोजन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया था। समय समय पर कई उपाय सुझाए जाते हैं, जैसे विवाह की आयु को बढ़ाना, एक या दो बच्चे के जन्म के बाद माता पिता किसी एक का नसबंदी कराना, संयम से रहना तथा पुत्र की कामना पर अंकुश लगाना। आज समाज की स्थिति यह है कि जो भी शिक्षित महिलाएं हैं जनसंख्या वृद्धि के विस्फोटक परिणामों को अब समझने लगी हैं, किंतु समाज के किसी विशिष्ट वर्ग का इस दिशा में सोचना या कदम उठाना काफी नहीं है। सच तो यह है कि प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक संप्रदाय को, जन जन को इस विकराल समस्या से अवगत होना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने ही सुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम यह क्यों नहीं सोच पाते कि हमारे वंशज उसी सुख के अधिकारी होंगे जो सुख हमारे लिए आज अपेक्षित है। प्रत्येक भारतीय नर नारी को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी सोचना होगा, तभी इस गंभीर समस्या का निराकरण संभव है। देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना परम आवश्यक है। जितना ध्यान औद्योगीकरण की ओर लगाना है, उससे अधिक ध्यान शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा की ओर देना होगा, ताकि बहुत सारी समस्याओं का स्वतः निराकरण हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। सरकार और समाज सेवी संस्थाओं की ओर से परिवार नियोजन संबंधी प्रयासों को प्रत्येक व्यक्ति समझे और उस पर अमल करे। आत्मसंयम परिवार को सीमित रखने का सर्वोत्तम साधन है। देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर युग धर्म को पहचानना होगा और अपने परिवार को छोटा रखना होगा। जनसंपर्क विभाग, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक, सभी को इस दिशा में अपने अपने स्तर पर रचनात्मक सहयोग देने होंगे और इस नारा पे सबको ध्यान देना चाहिए, हम दो हमारे दो। विश्व की आबादी आज 7 अरब और भारत की आबादी 1 अरब 25 करोड़ है। चीन ने अपनी संकल्प शक्ति से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है। हम सभी को उसी से सीख लेनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि का कुप्रभाव केवल मौलिक आवश्यकताओं पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण की जननी बन गई है।
1: अभी बहनें सुन रही थी पूर्व प्रसारित वार्ता। आज की वार्ता का विषय था जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी सुधा धीर। इस वार्ता के बाद बहनों आइए उठाते हैं गीत का आनंद और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। बहनों, अचानक से मेघों का आना मन के तारों को झंकृत कर देता है और बहुत सी अनकही बातें आँखों के रास्ते कहीं ना कहीं बह निकलती हैं। तो आइए बहनों, ऐसे ही भावों से भरा गीत हम सुनते हैं।

बहनों, आसमान में उमड़ते घुमड़ते मेघ अलग ही सौंदर्य का सृजन करते हैं और बहुत सी बातें मन में उमड़ने लगती हैं जो हमारे प्रियतम के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो आइए बहनों, चलते चलते सुनते हैं ऐसा ही एक गीत।

नारिलो कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदो।

0: स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना,

0: और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी
1: जी जी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह की जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: जी।
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा देखिए, विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें

0: उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: जैसे
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें।
0: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें। और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpancell@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
1: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम आइए सुनते हैं। आज कलाकार हैं विवेकानंद ठाकुर। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए गोदना गीत।

0: के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: श्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे। इस यात्रा के दौरान आर्थिक, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए सीआईडी झारखंड ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों के मामलों में शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से कार्रवाई करना, मानव तस्करी के मामलों को शीघ्र पहचान, पीड़ितों की सुरक्षित बरामदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,164 लोगों की जांच में 108 मलेरिया संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी दर घटकर 2.6% रह गई, जबकि 1 जुलाई को 3,240 संदिग्धों की जांच में 326 मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी दर 10.1% थी। 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में 218 की कमी और पॉजिटिविटी दर में 7.5% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गोड्डा महिला कॉलेज में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली एवं सतत विकास लक्ष्य विषय पर कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सम्मेलन में अमेरिका, नेपाल और अफ्रीका के प्रोफेसर भी ऑनलाइन जुड़े।

0: रहे हैं और बिना पारंपरिक ज्ञान के वो नहीं होगा। यहाँ के लोग उस पारंपरिक ज्ञान से विकास में योगदान कर रहे हैं।
1: बीआईटी मिश्रा आज से 10 जुलाई तक इमर्जिंग ट्रेड्स इन स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक कंप्यूटेशनल और सांख्यिकीय तकनीकों का विश्लेषण कर प्रतिभागियों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को विकसित करना है। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीकों और उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @handle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @handle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। यह पायलट स्तर की रिएक्शन प्रणाली नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और अन्य कृषि नैनो उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई है। संस्थान के निदेशक ने इसे उपलब्धि पर अनुसंधान दल को बधाई दी है। झारखंड समेत समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड में SIT ने DD बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से लौटते समय गिरफ्तार किया है। इस मामले में DD बार के मैनेजर विजय महानंद सहित अमित लोहार और लखिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वही मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गैंगस्टर प्रिंस खान के सदस्य के साथ आज तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी शिवराम और शिवा घायल हो गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शिवराम और शिवा प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी।
3: के निवासी अपराध कर्मी शिवराज और शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। यह हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
4: संयुक्त छापेमारी में अपराध कर्मी शिवराज और शिवा को हिरासत में लिया गया।
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 78,258 पर और निफ्टी 149 अंक बढ़कर 24,419 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश, तेज हवा, वज्रपात और जल भराव की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा किसानों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CID ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों के सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान

0: लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में SIT ने DD बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं विवेकानंद ठाकुर। इनके स्वर में आइए सुनते हैं एक झूमर।

विवेकानंद ठाकुर के गाए इस झूमर के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए शामिल होते हैं घर आंगन कार्यक्रम में।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को सोना का नमस्कार। बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन की अपनी कुछ खासियत होती है। आज 6 जुलाई की भी अपनी खासियत है। आज ही के दिन विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया जा रहा है, आज ही के दिन विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाया जा रहा है और आज ही के दिन महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी अर्थात संस्थापक रहे, अखंड भारत के प्रबल समर्थक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। डॉक्टर मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1901 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की एमए की डिग्री प्राप्त की और फिर बाद में उन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की। मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और 1933 तक इस पद पर बने रहे। 1943 से 1946 तक वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर वे देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के पद पर बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते से असहमति के कारण उन्होंने 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले वह अध्यक्ष बने। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण हिस्सा मानते थे और वहां जो लागू अनुच्छेद 370 था उनके वे कट्टर विरोधी थे। उनका दृढ़ संकल्प था एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। 1953 में जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम मतलब कि वहां जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता के विरोध में उन्होंने बिना परमिट के कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में प्रवेश करते ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया और 23 जून 1953 को नजरबंद के दौरान उनकी रहस्यमय ढंग से जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना जीवन उन्होंने न्योछावर कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक अखंडता और जनसेवा का प्रतीक था। उनके विचार आज भी आधुनिक विचारधारा की नींव माने जाते हैं। आज जैसा कि हमने बताया कि विश्व जूनोसिस दिवस भी है, आज संपूर्ण विश्व में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं उन जूनोटिक रोगों के खतरों और उससे बचाव के प्रति साधारण जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों को समर्पित है। 6 जुलाई 1885 को उन्होंने पहली बार रेवीज के पहले सफल टीके का आविष्कार किया था। जूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के कारण जानवरों से इंसानों में फैलती है। जैसे कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, तो हम कहते हैं कि घर में अगर हम कुत्ता अगर रखते हैं पालतू, तो बच्चों का घर में अपने बच्चों का जैसे टीकाकरण होता है, वैसे ही पालतू कुत्तों का भी समय समय पर उनके अस्पताल ले जाकर उनका टीकाकरण करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ उनका भी देखरेख, उनका भी चिकित्सा, समय समय पर चिकित्सीय परामर्श लेना जरूरी होता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में चार साल पहले की बात है कि 2020 में COVID-19 की वजह से पूरे विश्व में तबाही मच गई। यह भी एक जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक बीमारी थी
उसी तरह नीपा वायरस भी एक ऐसी बीमारी जो विश्व में फैल रही थी जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। साथ ही साथ जब बर्ड फ्लू फैलता है, मतलब कि कभी कभी ऐसा हम लोग समाचारों में सुनते हैं कि कई जगहों में मुर्गियों में बहुत सारी परेशानी आने लगी या मुर्गियां बीमार रहने लगी, तो मुर्गियों को काफ़ी संख्या में एक साथ मार दिया जाने लगा। तो और ऐसे समय में कहा भी जाता है कि हम जो भी व्यक्ति जो कि ऐसे भोजन को लेते हैं, उन्हें भोजन ऐसे भोजन से रोका जाता है ताकि उस पक्षी के माध्यम से मनुष्य में वो बीमारी नहीं आ जाए। यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जो बीमारी है बर्ड फ्लू, वह इंसानों में नहीं आ जाए। ठीक उसी तरह एक स्वाइन फ्लू बीमारी होती है जो सुअरों में होती है, और जो वैसे लोग होते हैं जो उस पशुओं का भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं उनमें वो बीमारी होने का डर रहता है। और समाचारों में कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखें। और एंथ्रेक्स, यह भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जानवरों से संक्रमण होकर मनुष्यों तक आती है। जूनोटिक बीमारियों के ये सभी प्रमुख उदाहरण हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें लगभग 60% संक्रामक बीमारियां जो होती हैं उनका शुरुआत जो होता है जानवरों से ही होता है। तो अगर हम अपने घर में जानवर पोसते हैं तो पालतू जो भी है वो अच्छी बात है, लेकिन जो फर वाले जानवर होते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। उनसे उनके फर का समय समय पर जो होता है, जैसे हम लोग अपने हेयर कट करवाते हैं, बालों की कटाई छटाई होती है, तो उनके भी जो फर जब उड़ते हैं तो उनको भी कटिंग करवाना होता है, उनका भी कटनी छटनी करवाना होता है, क्योंकि वर्षा के समय उनके भी बाल और रोए बहुत उड़ने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है यदि नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से वो हमारे लंग्स तक, मतलब हमारे श्वास के नली में फंस जाए तो फंसने से कई तरह की फंस सकते हैं, और ऐसे में कई तरह की संक्रामक बीमारियां या दम्मा जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती है। तो कई दफा ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जानवर को छू लेते हैं और फिर उसी हाथ से खाना भी खा लेते हैं। तो अगर हम जानवर को छूते हैं अच्छी बात है, लेकिन जानवर को छूने के बाद हम अपने कपड़े को बदल लें, हम अपने पैर को हाथ को अच्छे से धो के साबुन से, उसके बाद हम अपने खाना को, जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको ग्रहण करें, क्योंकि जानवरों में स्वयं खुद को ठीक करने की कई ऐसे होते हैं उपाय जो कि वो खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह जानवरों से बहुत कम होती है। और इस वजह से जिस बीमारी से जानवर ग्रसित होते हैं वो तो कहीं किसी हद तक लड़ भी ले, लेकिन मनुष्य अगर उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वह उस बीमारी से नहीं लड़ पाता है। घर में जैसे कि चूहे का आना जाना आम बात है और लगातार लगभग घरों में, गांव घर में चूहे का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर किसी चूहे की मौत प्लेग के वजह से हो जाती है, मतलब कोई संक्रमण होने से हो जाती है, तो उस वजह से मनुष्य में प्लेग जैसी घातक बीमारी भी फैल सकती है। तो एक छोटी सी बात समझ में ये आती है कि जब भी हम अपने घर के आसपास जानवरों को रखें तो इंसान उससे थोड़ी दूरी अवश्य बना के रखे, और साफ सफाई का खास ध्यान रखे, और जब भी अपने पालतू जानवरों को भी छुए, चाहे वह पक्षी हो, मुर्गियां हो, चाहे वह घर के आसपास के, अगर आप सुअर पालन ही कर रहे हो या गाय बकरी जो भी हो, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने हाथों को साबुन से धोएं और अपना भोजन उनके अगल बगल बैठकर नहीं करें, उनसे हटकर करें। अगर घर में छोटे बच्चे के शौक से आप अपने घर में कुत्ते भी पालते हैं तो भी आप उसके बगल में बैठकर खाना नहीं खाएं या बहुत ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहे, क्योंकि उनके भी रोए उड़ सकते हैं, बिल्लियों के भी रोए उड़ सकते हैं और वो श्वास नली में जाकर बड़ी बीमारी के कारण बन सकते हैं। तो ये तो हुई छोटी सी जानकारी की बात। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत इस अंतराल के बाद।

0: छोटो आंगन मामा परिजन
1: मामा। बहुत ही प्यारा सा भक्तिभावपूर्ण देवी गीत हम लोगों ने सुना और आशा है आप लोगों को भी बहुत ही प्यारा लगा होगा। बहनों, परिवार की खुशहाली के लिए हम हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समझदारी हो तो हमारा परिवार हम खुशहाल रहेगा। और समझदारी तभी आ सकती है जब हम शिक्षित हो, और अगर हम किसी कारण से शिक्षित नहीं भी हो पाए तो हम अपने घर के बच्चों को शिक्षित करें, और इसी में हमारे परिवार की खुशहाली है। आइए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं श्रीमती पुष्पलता सिन्हा की पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से परिवार की खुशहाली में शिक्षा की भूमिका।
2: घर परिवार शिक्षा प्राप्त करने का पहला स्थान है, जहाँ जीवन के पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। अपने जीवन का सर्वप्रथम पाठ अपने माता पिता से ही मिलता है, विशेषकर माँ से। यही हमें शिक्षा का महत्व बताया जाता है। जीवन में मूलभूत तीन आवश्यकताएं थीं, भोजन, वस्त्र, आवास, परंतु अब शिक्षा अति अनिवार्य आवश्यकताओं की श्रेणी में आ गया है। जिस प्रकार भूखे के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अच्छी जिंदगी बनाने के लिए शिक्षा बहुत ही मददगार साबित होती है। पहले के समय में संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग कृषि से लिए आय के द्वारा अपने परिवार का खर्च दायित्व निर्वहन करते थे, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, वस्त्र, भोजन हुआ करता था, लेकिन शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। मुखिया जिस भी प्रकार का आदेश पारित करते थे, उसे बिना किसी टोका टाकी के बाकी के सदस्यों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था, जिसके कारण बहुत प्रकार का हानि भी उठाना पड़ता था। परिवार में जो भी बड़े होते थे, वही घर परिवार का दायित्व निभाते थे, चाहे वो शिक्षित या अशिक्षित, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में कब किसको क्या जरूरत है, इसे समझना भी नहीं चाहते थे। जैसे कोई सदस्य बीमार पड़ गया तो उसे चिकित्सा की आवश्यकता है या नहीं, ये भी घर के मुखिया पर निर्भर होता था। ऐसी परिस्थिति में बीमार सदस्य की असामयिक मृत्यु भी हो जाती थी। ज़्यादा जरूरत पड़ने पर झोला छाप डॉक्टर से दिखाकर अपना बोझ हल्का कर लेते थे। ऐसी दुर्घटनाएँ अज्ञानतावश ही होती थी। शिक्षा के अभाव में चिकित्सा की अनिवार्यता को भी नहीं समझ सकते थे। समय बीतने के साथ साथ लोग शहरों की तरफ भागने लगे। शहरों में बाजारीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण नौकरी की गुंजाइश तो थी, लेकिन वहाँ शिक्षित होना जरूरी था, जिसके कारण वे शिक्षा के महत्व को भी समझने लगे। धीरे धीरे लोग खुद भी शिक्षित होने लगे और अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी शिक्षित करने के लिए स्कूलों की तरफ जाने लगे। शहरों में कमाने लगे तो शहरों में ही रहने लगे। इस प्रकार संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित होने लगे। एकल परिवार में शिक्षा की महत्व और ज़्यादा समझ में आने लगी। जब परिवार का सदस्य जो पैसा कमाने वाले थे नौकरी पर जाते, तो घर को सही तरीके से देखरेख करने के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना जरूरी था। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उसे घर खर्च करने के लिए बजट को ध्यान में रखना होता है। कितने पैसों को घर की वस्तुओं पर खर्च करें, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करें, भोजन और कपड़ा पर कितना खर्च हो, मुश्किल समय के लिए भी बचा कर रखना है, ऐसी सब बातों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों में शिक्षा का जागरण हुआ और कुछ कुछ परिवार में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। परिवार का कोई सदस्य कभी छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हो जाए तो उसे घरेलू इलाज से किस प्रकार से ठीक किया जा सके, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और ऐसी बातें घर में स्त्रियां ही कर सकती हैं। सर्दी खांसी, फोड़ा फुंसी, मौसमी बुखार, पेट संबंधी छोटी छोटी परेशानियों को घरेलू चिकित्सा से कैसे ठीक कर लें, डॉक्टर के पास जाकर मोटी फीस और कीमती दवाइयों से भी बचें, इसका ख्याल रखना होता है। खुद भी अस्वस्थ हो जाएं तो प्राथमिक उपचार तो निश्चित तौर पर कर ही सकते हैं, और ये सब बातें हम शिक्षित होने पर ही कर सकते हैं। इस तरह हम अपने बजट को भी संतुलित रख सकते हैं, हमारे परिवार की खुशियाँ भी बनी रहेंगी। एकल परिवार में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है शिक्षा, क्योंकि वहाँ सिखाने बताने के लिए बड़े या बुजुर्ग नहीं होते हैं। हमें हमारा ज्ञान और नैतिक शिक्षा ही सुदृढ़ और बुद्धिमान बनाता है। बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए खुद को शिक्षित होना जरूरी है, तभी हम उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा सकेंगे, उसके गृह कार्य को और पढ़ाई की ध्यान रख सकेंगे। आज माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं ताकि वो आगे चलकर अच्छी नौकरी, व्यवसाय, तकनीशियन का काम कर सके और समाज में सम्मान की जिंदगी जी सके, देश का नाम रोशन कर सके। शिक्षा सिर्फ किताबी ना हो, इसे भी ध्यान रखना होगा। शिक्षा ऐसी हो जिसमें संस्कार हो, सभ्यता हो, रहन सहन का पाठ हो, बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान रखने का ख्याल हो, अतिथियों का सत्कार हो, बुजुर्गों की सेवा हो, अपने आसपास अच्छे माहौल बनाएं, ऐसा परिवार बनाएं जिसमें दबाव छिपाव ना हो, स्नेह प्रेम हो, एक सभ्य समाज हो जिसमें जाति भेद ना हो, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, अपने चारों तरफ स्वच्छता हो, हरियाली हो, हमारा व्यवहार सबके प्रति सद्भावनापूर्ण हो। आज शहरों में सभी वर्ग के लोग रहने लगे, जहाँ लोग ढेरों तरह के व्यवसाय और तरह तरह के विज्ञापनों के द्वारा पैसे कमा रहे हैं। आज बढ़ते बाजारीकरण के कारण धड़ल्ले से विज्ञापनों के द्वारा वस्तुओं का बिक्री कर रहे हैं। इसकी खरीदारी उच्च वर्गीय लोग तो बिना सोचे समझे कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, परंतु मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को इसकी आवश्यकता होने और गुणवत्ता पहचान कर ही अपनी सूझबूझ से खरीदनी चाहिए। देखा देखी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपनी जितनी आय हो उसी के अनुसार अपने बजट बनाने चाहिए, मतलब जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही पैर फैलाएं। ऐसा नहीं हो कि पड़ोस में महंगी वस्तु खरीद कर ले आया तो हम भी ले आए, खासकर तब जब उसकी जरूरत भी ना हो। कोई अपने बच्चे को दूर के महंगे स्कूल में भेजता है जिसे आने जाने के लिए गाड़ी या रिक्शा का जरूरत पड़ता हो, तो हमें वैसे खर्च से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें नज़दीक के स्कूल में देने चाहिए जिसकी ऊंची फीस ना हो, आने जाने में खर्च ना लगे, इससे हमारे पूरे महीने के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम असंतुलित भी नहीं होंगे। ऐसी सब बातों की सीख उचित शिक्षा ही दे सकती है, यही हमें हमारी पहचान दिलाती है। उचित शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्तों का निर्माण करती है। यह हमारे ज्ञान के स्तर को मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। माता पिता अपने बड़े होते बच्चे को सम्मानजनक पदों पर देखना चाहते हैं और इन सपनों को सच करने का केवल एक ही रास्ता है, अच्छी शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास और वृद्धि को भी बढ़ाती है। इस तरह शिक्षा का महत्व गांवों में भी बढ़ गया है। अब तो शिक्षा गांवों में लड़कियों को भी दी जा रही है। अब ग्रामीण लड़कियां भी शहरी क्षेत्र से कमतर नहीं हैं। सभी पढ़ रही हैं, सभी आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही मिलकर स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक तो है ही, यह देश के विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह शिक्षा हर परिवार में मुख्य भूमिका के रूप में है और हमें हमारे समाज में, देश में तरक्की करने, नाम रोशन करने और मुख्य रूप से आय के अच्छे स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा लोगों की सोच को सकारात्मक विचारों में बदल देती है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को इन्होंने बताया, इन्हें देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और सच ही है बहनों कि यदि हम शिक्षित होते हैं तो हम हर दृष्टिकोण से खुश रह सकते हैं। आइए एक प्यारा सा लोकगीत फिर सुनते हैं और झूमते हैं।

बहुत ही प्यारा सा लोकगीत हम लोगों ने सुना और इस प्यारे से लोकगीत के साथ ही हमारे कार्यक्रम घर आंगन का समय यही समाप्त होता है। लेते हैं आप सभी बहनों से विदा, सबको सोना का नमस्कार।

ये था ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम पटना केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। यह शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। शिविर में चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखूभाई तलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा इस महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बेहिया पेटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-327C पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती हुकूमत अब आम लोगों की शिकायतों के फौरी हल के लिए हर एक माह के दूसरे मंगल को पटना में रियासत सतही सहयोग शिविर मुनक़िद करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अहाता वाक़े संवाद भवन में होगी। ये खसूसी शिविर उन दरख्वास्त दहिंदों के लिए होगा।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा।

0: एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।

0: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ तकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ तकानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदुल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

कहीं दिन कहीं रात। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाजों में। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार थे OP नैयर। वक्त फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आवाजें एक बार फिर से महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की। साहिर लुधियानवी का गीत है, धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर की आवाज में आपने सुना ये गीत फिल्म कंगन से। गीतकार अनजान, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गुमराह से। आवाजें महेंद्र कपूर, आशा भोसले की, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: महेंद्र कपूर को आपने सुना फिल्म हमराज में। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रपट से कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को फिल्म गीत में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं रवि।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है बांग्ला गान। आरंभ में सुनिए कुमार सानू को।

शिप्रा बसु के गाए इस गीत के साथ ही बांग्ला गान कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और 5 बजे से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

0: भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है नम हो जाया करती थी और कहते मैं मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहां पे खर्चा करना है कहां पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीजें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल लेना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख सकते ये भी करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो

0: हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं, वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को।
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं।
1: हटा सकते
0: हैं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है, तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की, 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, या अपने साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाए, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड के भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाली की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे, तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां, इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी है, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र। वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन, पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल
1: रखी है।
0: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है, है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं, यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
1: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास हो गया, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहां पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और जो हमारे जो पेड़ है उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जल जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीजें इन सब, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर जीव जंतु है, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल। सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसे।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए,

0: तो साथियों आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे है कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
2: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
2: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
2: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं पेशेंट, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
2: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: है।
1: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए, हाँ, किस तरह
0: तो
1: से ट्रीटमेंट।
0: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
1: जी,
0: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है, और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
1: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या,
0: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में

0: आलमंड, वाइट एग, ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक, ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे
1: जी।
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
1: और विटामिन डी धूप से
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दे, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए, समोसे के
1: ट्रांसफैट के लिए मुश्किल है, ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना?
1: फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी को,
1: हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर,
1: हाँ, फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और

0: उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
1: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
0: गर्भाशय रहता, गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20 और 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, ऐसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है और बीच के 10 डेज होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओवरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
0: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना,
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF, IVF के तरफ जब जाते हैं तो IVF क्या होता है, तो IVF में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो परक्टली
1: हाँ सिर्फ, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में।
0: तो इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। हाँ। फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
1: एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट है, लास्ट स्टेप है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ

0: सकते।
1: जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है, ये भी होता है।
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
0: हाँ
1: और
0: नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
1: जी।
0: हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: कम हो
1: होती है,
0: जाती है स्टेंट में,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
1: जी।
0: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ
0: यूटेरस में,
1: खतरा होता है?
0: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, और इसका कैंसर हो सकता है बाद
1: जी।
0: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे
0: वैक्सीन
1: निजात?
0: उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
0: हाँ
1: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
0: डर
1: ऐसा
0: पैदा,
1: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
1: जी
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
1: जी
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
1: यूरिन के रास्ते से सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज़ है, यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
1: जी, तो
0: हाँ
1: उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात
0: नरगिस,
1: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर। हाँ, और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से, हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठ जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी कर,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपेनेसी, निडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पे ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
0: जी,
1: बाहर
0: जी,
1: निकलने के लिए
0: जी।
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल,
1: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
0: जी,
1: जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें

0: हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मानसी और लेकर आई हूं आपके लिए युववाणी का बेहद खास कार्यक्रम। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का दिन? उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा ही बीता होगा। सोमवार की व्यस्त शुरुआत के बाद अब समय है थोड़ी सी राहत, मुस्कुराहट और कुछ नई बातों का। जुलाई का महीना अपने पूरे रंग में रंग चुका है। कहीं रिमझिम बारिश की फुहारे मन को सुकून दे रही है, तो कहीं बादलों की आवाजाही मौसम को और भी सुहाना बना रही है। बारिश का ये मौसम अपने साथ कई नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और प्रकृति की खूबसूरती लेकर आता है। मित्रों, अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए भी कुछ पल जरूर निकालें, मगर दिन थोड़ा थका देने वाला रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय तक हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी दिलचस्प बातें, बेहतरीन गीत और रोचक जानकारियाँ। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत सोमवार की शाम को और भी यादगार बनाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जहाँ होंगी युवाओं की बातें, समसामयिक विषयों पर चर्चा, प्रेरणादायक विचार और आपके मनपसंद फिल्में गीत। तो मित्रों, आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में। यह दिवस क्यों मनाया जाता है और पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक रहना क्यों आवश्यक है। इसके बाद याद करेंगे देश के महान जननेता और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम को, उनकी पुण्यतिथि पर तथा उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान पर करेंगे संक्षिप्त चर्चा। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से भी आपको रूबरू कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान समय समय पर आपके लिए होंगे आपकी पसंद के मधुर फिल्मी गीत, जो आज की शाम को और भी सुरीला बना देंगे। आज के कार्यक्रम में डेली ट्रिविया के अंतर्गत पूछेंगे आपसे आकाशवाणी संबंधित प्रश्न। सोमवार के विशेष खंड सृजन में आप सुनेंगे रिमझिम कुमारी की सुमधुर आवाज में एक भावपूर्ण काव्य पाठ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रस्तुत होगा समसामयिकी का विशेष अंक, जिसमें देश दुनिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। साथ ही होगा स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत एक रोचक जानकारी, और अंत में समापन बातचीत के साथ संपन्न होगा हमारा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म स्त्री से एस्किंग और सचिन जिगर की आवाजों में ये गाना।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के अगले स्तंभ में बढ़ते हैं स्तंभ चर्चा की ओर। हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। रेबीज, बर्ड फ्लू और ब्रुसेलोसिस जैसी कई बीमारियां जूनोटिक रोगों की श्रेणी में आती हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। इस अवसर पर हमें कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना, उनके साथ रहने के स्थान की साफ सफाई बनाए रखना, बीमार पशुओं के संपर्क में आने पर सावधानी बरतना तथा पशुओं की देखभाल के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना जैसी कई आदतें बीमारियों से बचाव में मदद करती है। आज के समय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी वन हेल्थ की अवधारणा पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा मिलकर ही संभव है। इसीलिए दोस्तों, जागरूकता, स्वच्छता और समय पर उपचार ही सबसे बड़ा बचाव है। आइए, विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर हम सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और अपने साथ साथ पशुओं एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी समान रूप से ध्यान रखने का संकल्प लें। चर्चा विश्व जूनोसिस दिवस में बस इतना ही। अगले पड़ाव की ओर जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: दोस्तों, आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाज सुधारक और लोकप्रिय जननेता बाबू जगजीवन राम को। उनका जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव का डटकर सामना किया

0: और शिक्षा तथा दृढ़ संकल्प के बल पर देश के प्रमुख नेताओं में स्थान बनाया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और आज़ादी के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। कृषि, श्रम, रक्षा और खाद्य जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। वे हमेशा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लोगों की अधिकारों की आवाज़ बने रहे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। उनकी सादगी, दूरदर्शिता और जनसेवा की भावना भी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए मित्रों, उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और बताएं मार्ग पर चलने का संकल्प लें। मित्रों, अब बारी है एक छोटे से विराम की।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, विराम के बाद आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर के बारे में। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, वे एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, विधिवेत्ता और भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। डॉक्टर मुखर्जी ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कुलपतियों में से शामिल हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के साथ सार्वजनिक जीवन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने अपने विचारों और जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को का मानना था कि राष्ट्र की एकता, शिक्षा का विकास और जनहित सर्वोपरि होने चाहिए। वे लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है दोस्तों कि दृढ़ संकल्प, स्पष्ट सोच और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण किसी भी व्यक्ति को समाज में विशिष्ट स्थान दिला सकता है। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। इसके बाद अब बारी है हमारे दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया की, जिसमें हम पूछेंगे आपसे आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है कि आकाशवाणी का पुराना नाम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे दोस्तों। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको सोमवार के खास स्तंभ सृजन के अंतर्गत काव्य पाठ धिमझुम कुमारी की आवाज़ में। तो आइए बिना विलंब किए सुनाते हैं आपको यह भावपूर्ण काव्य पाठ।
5: मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वर्षा। सावन आया साथ में अपने बारिश को लाया, खेतों में फसलें लहराए सारे किसान झूम कर गाए। सावन आया साथ में अपने बारिश को लाया, मौसम की बाहर चारों ओर है छाया, छतों पर बच्चों ने खूब नहाया, नदियों का पानी बढ़ता जाए देख प्रकृति भी मुस्काए। सावन आया साथ में अपने बारिश को लाया, गगन में बादल काली छाई देखो देखो वर्षा आई, गगन में बादल काली छाई देखो देखो वर्षा आई, हर कोई इसका गुनगाता वर्षा सबके मन को भाता, रिमझिम रिमझिम वर्षा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। रिमझिम रिमझिम वर्षा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। काले काले बादल गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे। काले काले बादल गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे। सड़कों पर बह रहा है पानी, हमें कागज की नाव चलानी। हवा चल रही मंद मंद, सब लेते इसका आनंद। हवा चल रही मंद मंद, सब लेते इसका आनंद। सावन आया सावन आया, साथ में अपने बारिश को लाया। सावन आया सावन आया, साथ में अपने बारिश को लाया। अब मेरी दूसरी कविता है पर्यावरण। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, धरती माँ को हरा बनाओ। कचरा इधर उधर ना फेंको, पर्यावरण की रक्षा करना सीखो। कचरा इधर उधर ना फेंको, पर्यावरण की रक्षा करना सीखो। कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती को सुंदर बनाएं। कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती को सुंदर बनाएं। आओ मिलकर कसम है खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर कसम है खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। खतरे में है पृथ्वी हमारी, मिलकर हमें बचाना है। खतरे में है पृथ्वी हमारी, मिलकर हमें बचाना है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते, पेड़ों पर पक्षी है रहते। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते, पेड़ों पर पक्षी है रहते। पेड़ों को है नहीं काटना, वायु प्रदूषण नहीं कराना। पेड़ों को है नहीं काटना, वायु प्रदूषण नहीं कराना। स्वच्छ हवा और निर्मल पानी, जीवन की है यही कहानी। स्वच्छ हवा और निर्मल पानी, जीवन की है यही कहानी। नदी पहाड़ और हरियाली, इनसे सजती दुनिया प्यारी। नदी पहाड़ और हरियाली, इनसे

तपता अंबर तपती धरती, झुलस रही है दुनिया सारी, बरस रही है ज्वाला भारी, सूखी नदियाँ सूखी फुलबारी, बरस रहा है ज्वाला भारी, सूखी नदियाँ सूखी फुलबारी, सूरज ने डाला है डेरा, गर्मी ने सबको है घेरा, सूरज ने डाला है डेरा, गर्मी ने सबको है घेरा, धूप झेलना सब पर भारी, छांव लगती है सबको प्यारी, धूप झेलना सब पर भारी, छांव लगती है सबको प्यारी, तन तपता है मन तपता है, धरती और गगन तपता है, तन तपता है मन तपता है, धरती और गगन तपता है, अमरस शरबत और ठंडाई, आइसक्रीम है मन को भाई, अमरस शरबत और ठंडाई, आइसक्रीम है मन को भाई, खाली पाँव चला ना जाता, इतनी धूप सहा ना जाता, हवा भी चलती गरम गरम, पसीनों से भीगे हैं बदन, गर्मी इतनी पड़ रही, होता ना कुछ काम, एसी कूलर पंखे सब हो रहे हैं अब ना काम, गर्मी इतनी पड़ रही, होता ना कुछ काम, एसी कूलर पंखे सब हो रहे हैं अब ना काम, धरती पर है बढ़ रहा देखो कितने ताप, दोपहर में जो घर से निकले बन जाएंगे भाप, धरती पर है बढ़ रहा देखो कितने ताप, दोपहर में जो घर से निकले बन जाएंगे भाप। अब मेरी चौथी कविता है प्रकृति। कुदरत का है यह खजाना हम सबका उपहार, कुदरत का है यह खजाना हम सबका उपहार, इस हरी भरी दुनिया से हमें बहुत ही प्यार, पर्वत ऊंचे आसमां को छूते, बहते झरने मन को भाते, पर्वत ऊंचे आसमां को छूते, बहते झरने मन को भाते, फूलों की खुशबू नदियों की कलकल हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, फूलों की खुशबू नदियों की कलकल हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, हरी घास पर ओस की बूंदे सूरज की पहली किरणों से धुले, हरी घास पर ओस की बूंदे सूरज की पहली किरणों से धुले, प्रकृति की यह छटा निराली चारों ओर फैली हरियाली, प्रकृति की यह छटा निराली चारों ओर फैली हरियाली, प्रकृति हमारी सबसे न्यारी इसमें बसती दुनिया सारी, प्रकृति हमारी सबसे न्यारी इसमें बसती दुनिया सारी, फूलों पर मंडराती तितली आसमां में उड़ती चिड़िया रानी, फूलों पर मंडराती तितली आसमां में उड़ती चिड़िया रानी, दिन में सूरज रोशनी देती, दिन में सूरज रोशनी देती, रातों में शीतल चांदनी लाती, कुदरत ने इसको तरासा इंसानों ने इसको संभाला, इनका नहीं है कोई मोल क्योंकि प्रकृति है अनमोल, इनका नहीं है कोई मोल क्योंकि प्रकृति है अनमोल। अब मेरी पांचवी कविता है धूम्रपान। बीड़ी का धुआं बुरा, बुरा है धूम्रपान, नशा नहीं है काम का, नशा करे नुकसान, तंबाकू ताकत हरे कर दे दुर्बल स्मैक, धन मिलता सब धूल में पिए नशेड़ी पैक, तंबाकू ताकत हरे कर दे दुर्बल स्मैक, धन मिलता सब धूल में पिए नशेड़ी पैक, चीलम जलावे फेफड़ा धुआं भर दे पेट, चीलम जलावे फेफड़ा धुआं भर दे पेट, पीवे वो होवे दुखी तब बीड़ी सिगरेट, धूम्रपान आदत बुरी तन कर दे कमजोर, धूम्रपान आदत बुरी तन कर दे कमजोर, असर कलेजा पर करे खांसी करती सोर, धुआं से होती घुटन तन का होता नाश, धुआं से होती घुटन तन का होता नाश, धूम्रपान को छोड़िए गले न होगी खरास, धूम्रपान से फेफड़े हो जाते बेकार, धूम्रपान से फेफड़े हो जाते बेकार, इसके सेवन से सदा करना है इनकार, धूम्रपान करना मना फिर भी करते लोग, धूम्रपान करना मना फिर भी करते लोग,
खूब उड़ाते।

0: ये है धुआं और बांटते रोग, खूब उड़ाते हैं धुआं और बांटते रोग। सिगरेट बीड़ी तंबाकू, चाहे हो महंगा सिगार, सिगरेट बीड़ी तंबाकू, चाहे हो महंगा सिगार, कोई कम कोई ज्यादा बना रहा है तुम्हें शिकार, कोई कम कोई ज्यादा बना रहा है तुम्हें शिकार। बुला रहे हो मौत क्यों, पीकर तुम बीड़ी सिगरेट, बुला रहे हो मौत क्यों, पीकर तुम बीड़ी सिगरेट। धूम्रपान की लत बुरी कर देती बर्बाद, धूम्रपान की लत बुरी कर देती बर्बाद। खा लेती ये जिंदगी इतना रखना याद, खा लेती ये जिंदगी इतना रखना याद। धूम्रपान को छोड़ दे काया करे बीमार, जीवन के दिन चार है हंसकर इन्हें गुजार, जीवन के दिन चार है हंसकर इन्हें गुजार।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सृजन के अंतर्गत रिमझिम कुमार की आवाज़ में प्रस्तुत भावपूर्ण काव्य पाठ। उम्मीद है उनकी कविताओं के भाव और संदेश ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा। मित्रों अब बारी है हमारे दैनिक स्तंभ समसामयिकी की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए याद किया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। सहकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष का मुख्य विषय सहकार से समृद्ध रखा गया। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही। मित्रों कार्यक्रम के शुरुआत में हमने डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आकाशवाणी का पुराना नाम क्या था, जिसका सही जवाब है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। डेली ट्रिविया के बाद अब बारी आती है अगले दैनिक स्तंभ फन फैक्ट की, जिसमें हम आपको आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी बताएंगे। क्या आपको पता है मित्रों, आकाशवाणी ने सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि देश की अलग अलग भाषाओं में भी कार्यक्रम पेश किए हैं, जैसे असमिया, मराठी, बांग्ला, तमिल और उर्दू। हर क्षेत्रीय भाषा में आकाशवाणी का एक अलग कार्यक्रम है। इसके अलावा आकाशवाणी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहुंच बनाई है, जैसे कि डीडी इंटरनेशनल के जरिए हिंदी और विदेशी भाषाओं में कंटेंट प्रसारित करना। आज के डेली ट्रिविया और फन फैक्ट में इतना ही। पेश है फिल्म संगीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म शादी में ज़रूर आना से।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का युवानी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। विश्व जूनोसिस दिवस से जुड़ी उपयोगी जानकारी, बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर उनका प्रेरणादायक जीवन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके व्यक्तित्व की चर्चा, सोमवार के विशेष खंड सृजन में रिमझिम कुमारी की आवाज़ में काव्य पाठ, समसामयिक की डेली ट्रिविया फन फैक्ट और बीच बीच में सुनाए गए मधुर फिल्मी गीत। आशा करती हूँ इन सभी सेगमेंट्स ने आपकी इस शाम को और भी मधुर बनाया होगा। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है दोस्तों कि मनोरंजन के साथ साथ आपको ऐसी जानकारियाँ भी मिले जो आपको ज्ञान और सोच को समृद्ध करे। यदि आज के कार्यक्रम का कोई भी भाग आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें पत्र या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 810001। हमारा ईमेल एड्रेस है phair@gmail.com। फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। शुभ संध्या एवं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सैयारा के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है फ़हीम अब्दुल्ला ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है अली रज़ा मुस्तफ़ा ने।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म देवरा से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है शिल्पा राव और अनिरुद्ध रविचंद्र ने। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत सुने फिल्म भूल भुलैया 3 से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है और साथ में संगीत से सजाया भी है सचेत और परंपरा टंडन ने। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म धुरंधर से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मधुबंती बागची, जैस्मिन सैंडलास और शाश्वत सचदेव ने। गीत के बोल लिखे हैं जैस्मिन सैंडलास ने और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म मेट्रो इन दिनों से राघव चैतन्या की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने और गीत के बोल लिखे हैं अनुराग शर्मा ने।

अर्पण संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:55 हो रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगी लक्ष्मी पांडे। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगी कुमारी सुवर्णा घोष। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:15 पर प्रसारित होगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल कूद पर आधारित खेल खिलाड़ी। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अली अकबर खान साहब का सरोद वादन। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कल प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर होगा चिंतन मनन। 6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर संजय कुमार निराला से वार्ता। वार्ता का विषय होगा रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा। 6:40 पर प्रसारित होगा रामचरितमानस गान। 7:00 आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। 7:20 पर कार्यक्रम स्मृति संवाद के तहत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार होंगे श्री राम प्रसाद पंडित। फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल 9:06 पर। दिन के 11:00 11:30 पर कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम चित्रपट से के तहत। संध्या 5:30 पर। रात्रि 8:00 कार्यक्रम रजनीगंधा में। और रात्रि 10:30 पर भावगीत के कार्यक्रम में। कल 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगी इंद्राणी सिन्हा। दिन के 12:00 प्रसारित होगा शहरी महिला कार्यक्रम नारी लोक। दिन के 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 1:30 पर प्रसारित होगा धारावाहिक गंगा के सुरताल की 11वीं कड़ी। दिन के 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार होंगे जसवंत सिंह। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। कल संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:00 आप सुन सकेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारा पर्यावरण। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर किरण कुमारी से वार्ता। वार्ता का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह, हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण। 7:52 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे रंजीत कुमार पाठक। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे श्रीमती दीपशिखा का लिखा नाटक मेरी खामोशी। और रात्रि 10:00 प्रसारित होगा अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये था आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 6:00 को हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों का सोना का नमस्कार।
1: सभी का मन्नो की भी नमस्कार, अपनों का नमस्कार हो सोना बहन।
0: नमस्कार नमस्कार मन्नू भाई, और बताइए क्या हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छो। देखो कि है मौसम न परिवर्तन ललके,
0: गर्मी
1: कटा कम होलो छो, वर्षा पानी जे होले, हवा भी कटा कम छे, मने गर्मी हवा में उमस भी कम छे, ये वास्ते जे छे आदमी थोड़ा राहत छे, सब कुछ ठीक ठाक छो।
0: आरो
1: देखो कि किसान भाई बहनी जे छे खेती के तैयारी भी, धान के तैयारी भी करे लगले, बिचवा छलो जे तो आवा लगले ठीक ने, आरो सब कुछ ठीके छे। देखो कि अपना देश में जे छे प्रत्येक दिन कोई ना कोई पर्व त्योहार रहे छे, कोई ना कोई महापुरुष के जन्म दिवस होई छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन कुछ ना कुछ बात लेकर खास होता ही है मन्नू भाई। आज भी जरूर कुछ खास बात है। आज देखिए कि ग्रामीण विकास दिवस है
1: जी।
0: आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है
1: जी।
0: आज जूनोसिस दिवस भी है, और आज
1: बाबू जगजीवन राम के मना अथी भी छके, पुण्यतिथि भी छके, छै नै? तो दिवस हमरा सनी वास्ते खास ही रहै छै, और ये वास्ते हमरा सनी जे छै याद करै छै हुनका सनी के, आरो उनका प्रेरणा लै छियै।
0: देखिए जूनोसिस दिवस के बारे में बता दे कि ये जो दिवस है ये है कि जो भी जीव जंतु अपने घर आंगन में पोसते हैं, ठीक है, पोसते ही है, पालतू पशु जो भी है, तो उनसे जो संक्रमण के माध्यम से जो बीमारी आती है मनुष्यों में, उस विषय में जागरूकता फैलाने के बारे में ये अगर जन जागरण फैल जाए कि कौन कौन से जीव से किस तरह से संक्रमण से और मनुष्यों में क्या क्या बीमारी हो सकती है, इस विषय में जो जागरूकता फैलाई जाती है, इसीलिए यह जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। और आज 6 जुलाई 1885 में लुई पाश्चर ने सबसे पहले रेबीज का टीका का आविष्कार किया था। अभी रेबीज बोलेंगे क्या है तो जो जानते ही हम लोग, जो मनुष्य को बीमारी हो जाती है और जो की लगभग लाइलाज हो जाता है।
1: सोना बहन देखो कुत्ता जो बच्चा बुतरू काटी ला कुत्ता ना,
0: हमारा
1: मना की झाड़ फूक से काम नहीं चलाना
0: चाहिए,
1: जरूर से जरूर डॉक्टर के पास आना चाहिए, और ये आवश्यक जे बहुत नितांत सुई हुई छे डोज लेना चाहिए।
0: और सबसे बड़ी बात है मन्नू भाई, अगर आप जंतु जीव से प्रेम करते ही हैं तो जिस तरह आप अपने घर में बाल बच्चा पोसते हैं तो उसका टीकाकरण करवाते ही होंगे, तो उस तरह जीव जंतु का

0: कार्ड बनता है
1: जी जी।
0: और वो पशु चिकित्सक चिकित्सालय जो है हमारे सरकारी
1: जी
0: अस्पताल
1: जी।
0: है उनके लिए पशु चिकित्सक वहाँ पर बैठते हैं और आपको वो कार्ड बना के देंगे। जब आप छोटा से कोई भी जीव जंतु रखते हैं तो
1: जी
0: उसका
1: जी।
0: समय समय पर टीकाकरण होता है।
1: अच्छा।
0: उस कार्ड में उसका अंकित होता है इस महीने इस बच्चे को ये टीका लगा, अगले महीने में फिर से ये टीका लगेगा।
1: अच्छा, जनाब बच्चा बुतरुक टीका लगे, जानवर के भी टीका छे, खासकर कुत्ता के।
0: बिल्कुल
1: जी, जब पालतू कुत्ता रहे आबा तो सरकार जैसे सड़क पर जे कुत्ता रहे छे माने कि पालतू ने जहां तहां पले छे ओकरा सनी भी टीका दे के माने कार्यक्रम चलेलो जाय छे ताकि कोई भी कुत्ता जे सड़क पर को छे या पालतू कुत्ता या करो काटेला
0: आपके घर में
1: प्रभावित
0: पक्षी,
1: नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, पक्षी भी है जैसे, तो हम आए दिन हम लोग कुछ साल पहले सुने थे बर्ड फ्लू का संक्रमण हो रहा था
1: जी जी।
0: तो बर्ड फ्लू जो कि मूलतः पक्षियों में होती है और देखते हैं कि अभी गंगा के उस पार कौवा का एक झाक कौवा मर जा रहा है
1: हाँ।
0: या जो मुर्गियां हैं वो मर जा रही है अपने से या पोल्ट्री फार्म्स में जो बीमारी हो रही है बर्ड फ्लू की
1: जी
0: तो
1: जी।
0: ऐसे में बोला जाता है कि आप पक्षियों के संपर्क में नहीं आए तो उससे
1: हाँ।
0: मानव को भी वो बीमारी हो सकती है।
1: जी।
0: वैसे ही स्वाइन फ्लू एक बीमारी होती है जो कि सुअरों के संक्रमण से हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उस तरह से हम वैसे परिस्थिति में स्वयं को उससे दूरी बना के रखे, उससे बचे। और अभी जो विश्व हमारे भयावह दृश्य से गया वह उससे कौन अनजाना बैठा है, ये COVID-19 की ही बात
1: हाँ,
0: ले
1: हाँ,
0: ले
1: हाँ।
0: तो वो भी तो एक बहुत बड़े जो चमगादड़ से आने वाली वो बीमारी थी और पूरे विश्व में तबाही फैला के चली गई।
1: काफी प्रभावित हो
0: उसी तरह नीपा वायरस भी वही एक बीमारी जो है जो जंतु से ही आती है। इस तरह से कई जंतु जीव जंतु से आने वाली कई तरह की बीमारियां होती है
1: जी जी।
0: जो हमारे मानव को भी बहुत भयानक रूप से ग्रसित करके
1: हाँ,
0: वो ये लीला समाप्त कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि जीव जंतु से दूरी बना के रखे और जब भी हम अपने आसपास जो भी पालतू जीव है उसको छुए, हाथ पैर साबुन से धोए, उसके बाद हम अपना अन्न जल ग्रहण करें और जब भी हम खाना पीना भी खाए तो उसके संपर्क में बैठकर नहीं खाए।
1: जी जी,
0: तो इसी विषय पर जानकारी देना और जागरूकता फैलाना
1: हाँ,
0: वही है विश्व जूनोसिस दिवस है ना।
1: संपूर्ण विश्व में मनेलो जे छे तो हमरा से पूरा उम्मीद छे कि श्रोता भाई बहन जी छे जागरूक होते और देखो कि एखना जी अपने बतेलो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भी
0: हाँ, उनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: उनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता के ही एक विश्वविद्यालय से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था
1: जी जी।
0: उसके बाद वो वहीं से लॉ की भी पढ़ाई किए थे।
1: जी
0: मात्र
1: जी।
0: 33 साल के उम्र में उन्हें बहुत बड़ा पद मिलने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ था
1: जी जी।
0: और उसके बाद वो अपना जो राजनीतिक योगदान जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर वो राजनीति पर में अपना योगदान देना शुरू किए। और जो सबसे बड़ी बात थी वो उनके में ये था कि ये जो कश्मीर को जो 370 लागू हुआ था कि उसमें प्रवेश करने के लिए आपको अलग से परमिट मिलना चाहिए
1: हाँ हा।
0: तो इनका वो बहुत ज़्यादा विरोध करते थे इस चीज का
1: जी जी।
0: और इसी के वजह से जब वो बिना परमिट के वहां प्रवेश कर गए थे तो जो भी वहां पर वहां की सरकार उस समय थी
1: हाँ,
0: उन्हें उस समय उन्हें नजरबंद कर लिया गया था और उस नजरबंद में ही जेल में रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई
1: जी जी जी। आज के दिन अरे देखो कि मतलब कि एक और आरो महापुरुष छे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के जन्म जे छे बिहार के आरा जिला में तत्कालीन शाहबाद छले, चंदावा नामक एक गांव में एक साधारण दलित परिवार में होलो छले। आरो हुनका हुनी जे छे जाति आधारित जे भेदभाव रो डट एक सामना करलके। हुनी तो विलक्षण शक्ति के प्रतिभा सदम भरलो छेबे करले। हुनी जे पढ़ाई करला बाद जे छे ना भारत के राजनीतिक यात्रा भी हुनी करलके और कई तरह के रिकॉर्ड जनक संसदीय रिकॉर्ड उनको छे कि हुनी सासाराम संसदीय क्षेत्र से लगातार 8 बार सांसद हुनी रहल और 40 साल तक संसद बनलो रहले। आरो हुनी जे छे एक दलित उत्थान वास्ते बहुत काम करलके। दलित उत्थान के वास्ते हुनी जे छे जीवन भर संघर्ष करलके आरो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग नाम के एक संस्था के भी हुनी स्थापना करे में अहम योगदान दिलके। हुनी जे छे रक्षा मंत्री जे छे बनले 1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जे छे के समय हुनी भारत के रक्षा मंत्री छले और उनका नेतृत्व में राजनीतिक फैसला के कारण जे छे भारतीय सेना ने पाकिस्तान का करारी शिकस्त भी दिला छले और ओकरे बाद जे छे बांग्लादेश के उदय होले। हुनी जे छे भारत के कृषि मंत्री भी रहले। है तरह जे छे बाबू जगजीवन राम 1977 में भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनलो छे कि नहीं। तो बाबू जगजीवन राम भी एक दूरदर्शी निडर और

0: प्रखर प्रशासक छले। 6 जुलाई 1946 के हुनको निधन हो गेलै। तऽ लेकिन हुनी जे छै वंचित समाज वास्ते हुनको सशक्तिकरण वास्ते राष्ट्र निर्माणमे बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देले छले। आइ हमरा सनी एहनो महापुरुषके भी मने याद करै छै,
1: स्मरण करै और उन्हें अपने आत्मा से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो गांवों का देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और यहाँ के आधे से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, और भगवान करे कि ये गांव और फले फूले और गांव में फसल बहुत अच्छे से उपजे, क्योंकि जो हमारा अनाज का जो स्रोत है मनु भाई, वो केवल मात्र गाँव ही है, और गाँव से ही हमें अनाज मिल सकता है। हम अगर चावल के लिए दौड़ते हैं तो दुकान में तो बाद में वो चावल आता है, पहले वो खेतों में उपजता है। अगर हम गेहूं के लिए दौड़ते हैं तो दुकान में वो बाद में आता है, लेकिन वो खेतों में उपजता है। और उपजाने वाले वो जो ग्रामीण जो कृषक भाई बंधु होते हैं हमारे, वो अपने अनवरत अथक धूप नहीं, बरसा नहीं, जल नहीं, वो लगे भिड़े रहते हैं, और हमारे जो पूरे भारतवर्ष के लोगों के मुंह में अन्न पहुंचाए, इसके लिए वो अपना अनवरत अथक प्रयास करते रहते हैं, लगे भिड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं।
0: और देखो ये वस्ता सोना बहन जैसे गांव के विकास बड़ा ही जरूरी छे कहलो जाए,
1: और बहुत जोरों शोरों से हो भी रहा है। मनु भाई, एक समय था कि गांव से फसल शहर तक आने में बहुत तकलीफ होती है, आज देखिए कि गांव-गांव में सड़क बन चुका है लगभग, और सब सड़क से मुख्य सड़क से गांव जुड़ गई है, और लोग आसानी से अपने जो जो भी गाय का जो कुट्टी होता है, जो कि धान वान को जो निकालने के बाद बचता है, तो शहरों में वो आराम से ट्रैक्टर से या जुगाड़ गाड़ी से धड़ल्ले से वो चलाता है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन आ ही जाता है, है ना। उसी तरह जिस तरह गांव का सामान शहर में आ जाता है, शहरों से भी सामान गाँव में चली जाती है।
0: जी जी।
1: और आज कहीं भी ये नहीं है कि जल का अभाव है, जगह जगह मोटर बैठा हुआ है, बोरिंग किया हुआ है, और किसान भाई कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो है, क्योंकि खेती के लिए वर्षा पर ही हम निर्भर हैं मूलतः, लेकिन फिर भी ट्यूबवेल की भी व्यवस्था है, है ना। तकनीक तो हमारे गांव को अछूती नहीं रखी हुई है, वहां भी हर तकनीक पहुंच चुका है, मोबाइल बोलिए और मोटर बोलिए, पानी का टंकी बोलिए, सब चीज की व्यवस्था गांव में हो चुकी है।
0: सोना बहन देखो कि है अखन जे विश्व ग्रामीण दिवस भी मनेलो जा रहलो छे, गांव में अभी भी आधारभूत संरचना के अभाव छे, ग्रामीण में अभी भी गरीबी छे, जना कि पेयजल के संकट छे, बिहार में अपनो राज्य में पेयजल वास्ते बड़ा मने अच्छा मुहिम चले लगलो छे, आरो सब कुछ बढ़िया चीज रहलो छे, लेकिन एकरा में भी जे छे ईमानदारी
1: अभी अभी हाल ही में एक छोटा सा पंचायत भवन में एक छोटा सा सरकार द्वारा एक प्रयास किया गया कि जनता के बातों को स्वयं सरकार सीधे तौर से सुनेंगी और उनके परेशानी को सीधे तौर से दूर करेंगी। तो ये जगह जगह पंचायत भवन में एक सभा का आयोजन करके जनता से सीधे तरीके से रूबरू होने की भी कोशिश की गई है।
0: सोना बहन देखो है अपना देश में ही नहीं कि मना कि गांव ग्राम विकास जरूरी है। 6 सितंबर 2024 का संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने सर्वसम्मति से एक फैसला ले छले कि प्रत्येक दिवस प्रत्येक वर्ष जे छे 6 जुलाई का विश्व ग्रामीण दिवस मनेलो जेते, और इस संकल्प में जे छे बांग्लादेश द्वारा जे मना है करलो गेले शुरुआत, एकरा में भारत, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड आदि इत्यादि जे छे बहुत जे विकासशील देश छे उन्हीं अपना समर्थन दिलके, आरो संयुक्त राष्ट्र के अथक प्रयास से आखना यानी कि 6 सितंबर के 6 जुलाई के जे है दिवस मनेलो जा रहा है। तो हमरा सनी पूरा पूरा उम्मीद छे कि ग्रामीण विकास में जैसे न केवल सरकार की ही भागीदारी रहा, बल्कि हमरा सनी
1: साधारण जनमानस की
0: खूब भागीदारी, रहा
1: आज गांव बहुत सफल है, गांव बहुत विकसित है, कहीं कहीं थोड़ी परेशानी है मनु भाई, ये तो मानना ही होगा कि जहां बाढ़ है, जहां सुखाड़ है, जहां की वर्षा के समय में बाढ़ हो जाता है, तो वैसे क्षेत्र में थोड़ी परेशानी तो हो जाती है, वहां सभी लोग किंग कर्तव्य भी हो जाते हैं, क्योंकि वैसी परिस्थिति में जहां प्राकृतिक आपदा आ जाती है वहां मानव भी निरुत्तर हो जाता है ना। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छी
0: जैसे कुछ मना जैसे आवश्यक संदेश सुने छे और बाद फिर कार्यक्रम में आगे बढ़वे।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
5: तिलका मांझी तो बहुत।
4: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
5: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: हाँ, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा देवी गीत।

0: बाबा।
1: हाँ
0: बहुत
1: सुना
0: ही
1: बहन,
0: प्यारा सा भक्ति
1: इतना
0: भावपूर्ण
1: सुंदर
0: गीत।
1: भक्ति गीत सुनवे लो आपने श्रोता भाई बहनी का, कलाकार का बहुत बहुत धन्यवाद दीछे। ठीक है ना, और आपने देखो
0: बिल्कुल
1: जखनी बताया चलो कि मौसम मौसम कटा ठंडा होले है, मौसम में बड़ा बीमारी भी होले
0: बिल्कुल
1: जखनी की
0: बिल्कुल,
1: मना
0: बहुत लोगों को
1: उमस
0: बीमारी
1: चले
0: हो रही
1: चले
0: है,
1: उमस चले
0: धूप और
1: चले।
0: गर्मी और अचानक से बारिश,
1: और देखो हाई मौसम में ज्यादा बीमारी हुआ लगे छे हो जे
0: सर्दी खांसी बुखार।
1: शीतलहरी आरो हो लू से ज्यादा एकरा में प्रभावित लोग हो जाए छे। है मौसम ही एहनो छे कि बाहर भीतर सब तरह बीमारी होत हो, ठीक कि
0: हाँ
1: नहीं। खान पान पर भी ध्यान दो, आरो जे छे आवश्यकता अनुसार चिकित्सक से डॉक्टर साहब से सलाह भी लेना चले। लेकिन मौसमी रोग जे मौसम में ही होइ छे, ठीक कि नहीं। आरो मौसमी रोग के निदान भी जे छे प्राकृतिक तरह से घर गृहस्थी में जे फूल पौधा छौ किचन में जे सामान छौ ओकरा से निदान करे पारे छौ। जेना कि सर्दी हो गेलै वर्षा में भिंगला बाद अतः जे छे तुलसी पत्ता काढ़ा पियो, ओकरा में गोटा गोल मिर्च डाली दह, ठीक कि नहीं।
0: लेकिन कभी कभी मनोवाय परेशानी जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर चिकित्सक से अगर समय समय
1: हाँ
0: रहते परामर्श नहीं ले
1: चिकित्सक
0: तो
1: से सलाह
0: परेशानी
1: लेना ही
0: बढ़ भी
1: चाहिए
0: सकती है।
1: जो जो कि
0: हाँ
1: मौसमी जो कि
0: अपना
1: घर गृह
0: प्राकृतिक चिकित्सा तो
1: नए
0: करते ही
1: फूल
0: रहिए,
1: लगे।
0: लेकिन साथे साथ चिकित्सक से परामर्श भी करिए।
1: लेकिन एक बात छे सुना बहन कि जो है घर वाला जे दवाई हुई छे जेना कि गाय के दूध में जैसे हल्दी मिला के पियो देखो सर्दी
0: हाँ
1: खांसी ठीक होते।
0: हाँ
1: तो अपने जैसे कुछ सुनवाई वाला छो कि मना
0: हाँ
1: श्रोता भाई
0: मौसमी
1: बहन
0: रोग
1: के।
0: और उसके निदान के विषय में पूर्व प्रसारित वार्ता में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋषि रंजन प्रसाद।
1: वाह
0: आइए सुनते हैं और जानते हैं।
1: जानते हैं अब हटा वार्ता।
2: श्रोताओं, षड्ऋतुओं के अपने इस प्यारे देश भारत में प्रत्येक ऋतु की अपनी एक अलग महत्ता है, अपना एक अलग महत्व है, अलग एक विशिष्टता है, अलग एक खुशबू है। लेकिन जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है यानी कि मौसमी परिवर्तन जब भी होता है तो अपने साथ कुछ अच्छी बातों को तो लेकर आता है, खुशियां भी लेकर आता है, मगर साथ ही साथ कुछ ना कुछ कष्ट, रोग, शोक और व्याधियां भी लेकर आता है। मौसमी रोग बदलते हुए मौसम में हो ही जाया करते हैं या फिर मौसम से संबंधित जो रोग हैं वो अपने समयानुसार हो ही जाया करते हैं, मगर जिस प्रकार से रोग हैं उसी प्रकार से उसके निदान भी हैं। मौसमी रोग जो अभी का मौसम है, इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनके निदान के क्या संभावित उपाय हैं, इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर ऋषि रंजन प्रसाद जी को। ऋषि जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। हम अपने श्रोता भाइयों के लिए जानना चाहेंगे, बहनों के लिए जानना चाहेंगे कि अभी के समय में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके कारण क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे और

0: उपचार क्या होगा?
1: सबसे पहले तो वर्षा ऋतु में चर्म रोग बहुत पाया जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम होने से
0: जी
1: व्यक्ति जब बारिश में भींगता है
0: जी
1: और भींगे हुए वस्त्र में कुछ देर तक रह जाता है, ऐसे में चर्म रोग होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, इसमें बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी पाया जाता है। साथ ही साथ पेट संबंधित बीमारियां भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है
0: जी।
1: मुख्य रूप से चर्म रोग कई प्रकार के होते हैं
0: जी,
1: लेकिन वर्षा ऋतु में जो चर्म रोग उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रूप से पित्ती उछलना, दाद होना, खुजली, दिनाई और गोल गोल आकार के रिंगवर्म होना मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो वर्षा ऋतु में भींगने के बाद तुरंत कपड़े को बदल लेना चाहिए
0: जी।
1: भींगे हुए वस्त्र में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए
0: जी।
1: उसके बावजूद अगर किसी को चर्म रोग हो जाता है तो होम्योपैथिक दवाई से इसका उपचार संभव है।
0: चर्म रोग, ये नोचनी, खुजली, ये सब जो होता है वही चर्म रोग में आता है ना?
1: हाँ,
0: या फिर लाल लाल चकत्ता हो गया, यही चर्म रोग में आएगा। मूल रूप से ये भीगने के कारण होता है।
1: हाँ,
0: या फिर और गंदगी वगैरह होती होगी,
1: गंदगी से भी होता है। परंतु भीगने से अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं
0: जी,
1: जो कि ज्यादा कष्टदायक है।
0: अच्छा जी।
1: खासकर उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है।
0: अच्छा, इसका निदान क्या होगा?
1: इसके लिए अगर भींगने से ऐसा रोग उत्पन्न होता है तो इसकी मुख्य दवा रस्टक्स है, और गोल गोल अगर दांत के तरह का अगर चर्म रोग होता है तो उसमें टेलोरियम 200 या फिर नेट्रम्यूर 200 का उपयोग श्रेष्ठकर है।
0: नोचनी खुजली जब हो तो उसे नोचना खुजलाना चाहिए कि नहीं?
1: उसे अगर खुजलाते हैं तो नाखून से वो जर्म्स फिर आप दूसरे जगह जब खुजलाएंगे तो वहां पे फैला देगा।
0: यानी आपने नोच लिया, नाखून में जर्म्स आ गया और दूसरी जगह वो
1: चला जाएगा।
0: चलिए, यानी कि खुजलाने से परहेज करना चाहिए, सहलाना चाहिए, और जो उपाय आपने बताया हुआ रस्टक्स वगैरह का, लगाने के लिए भी कोई रसायन?
1: लगाने के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है,
0: रसायन होता
1: है उसमें, मुख्य रूप से इचिनेशिया क्यू, नीम क्यू आती है जिसका उपयोग कर सकते हैं
0: जी। तो ये तो हुआ कि चर्म रोग से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब रही बात है कि अमूमन ऐसे समय में उल्टी वगैरह भी होता है,
1: पेट संबंधित बीमारियां होती है,
0: पेट संबंधित बीमारियां हो जाएगा
1: निश्चित रूप से,
0: है ना? तो ये दूषित जल से होगा या फिर मौसमी प्रभाव से होगा?
1: दूषित जल मौसमी प्रभाव भी है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, और साथ ही भोजन।
0: अच्छा,
1: ऐसे मौसम में दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, पीने के काम में लाते हैं, तो या तो उसे उबाल कर रख दें, ठंडा होने के पश्चात आप उसे ग्रहण करें, या फिर फिल्टर किया हुआ जल का ही उपयोग करें। ज़्यादा समय तक रखा हुआ पानी का उपयोग ना करें।
0: ना करना है, जो खाना है वो ताज़ी चीज़ों को खाना है
1: निश्चित रूप से,
0: गर्म रहे तो ज़्यादा अच्छा है,
1: ज़्यादा अच्छा है।
0: और मान लीजिए कि किसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि जब उल्टी वगैरह होने लगता हो तो क्या करना चाहिए?
1: उल्टी जब ऐसा हो कि उल्टी होना शुरू हो जाए, तो ऐसे में होम्योपैथिक दवाई इपिकाक 200 है जो कि श्रेष्ठकर है। साथ ही अगर ऐसा हो, अनुभव हो कि पानी पी रहे हैं या फिर भोजन ले रहे हैं और उल्टी हो रही है, तो आर्सेनिक 200 पावर के एक खुराक ठीक करने के लिए काफ़ी है।
0: और रही बात है कि नमक चीनी का घोल वगैरह,
1: वो तो डिहाइड्रेशन होने की स्थिति में वो सही है,
0: क्योंकि उल्टी भी होगी तो शरीर से पानी तो निकलेगा
1: निश्चित,
0: या फिर दस्त हो गए तो पानी निकलना है
1: निश्चित,
0: है ना? ऐसे में नमक चीनी का वो एक एक चुटकी नमक चीनी का पानी का घोल, ज्यादा
1: पानी का घोल उबाल कर उसको देना चाहिए,
0: वो तुरंत शक्तिवर्धक भी होता है और सामान्य स्थिति में ला जाता है। सर्दी खांसी हो, नाक बहने लगे,
1: भींगने से अगर नाक बह रहा है तो रस्टक्स का उपयोग सही है।
0: रस्टक्स,
1: साथ ही ब्रायनिया भी ऐसे मौसम में काम करता है, ब्रायनिया नेट्रम सल्फ, ये भी काम करता है। और खांसी भी अगर होती है ठंड लगने से, टॉन्सिल के कारण अगर खांसी हो रही हो तो उसमें बेलाडोना और बेराटाकार्ब, ये दोनों ही दवा उपयोगी है अभी के मौसम में। और सर्दी होने पर ब्राइनिया नेट्रम सल्फ, ये दवा उपयोगी हो इस मौसम में। साथ ही अगर बुखार भी अगर हो तो रस्टक्स, इपिटोरियम पर्फ और जेलसेमियम, ये तीनों दवाई उपयोगी है ऐसे मौसम में।
0: जी,
1: परंतु जब भी ऐसा हो तो किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा लक्षणों पर आधारित है।
0: जी,
1: इसलिए किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, फिर इन दवाइयों का उपयोग करें।
0: मूल रूप से अभी के समय में जो मौसम बदलता हुआ है, बरसात का जो मौसम है, ऐसे समय में यही सारी बीमारियां होंगी,
1: निश्चित रूप से
0: खुजली होंगी, उल्टी होंगे, दस्त होंगे, बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, कफ होगा, वो निकलेगा। इसके अलावा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं?
1: ऐसे जमे हुए जल जमाव के कारण मलेरिया फैलेरिया का भी प्रकोप रहता है।
0: जी,
1: चूँकि पानी का जमाव रहने से उसमें फैलेरिया का और मलेरिया का भी कीटाणु पाया जाता, मच्छर पाया जाता है। और बरसात के मौसम में ही जैसा हम लोग जानते हैं कि बिचड़े की बुआई होती है, और वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा फैलेरिया रोग पाया जाता है। उससे बचने का उपाय तो कुछ ऐसा है नहीं, परंतु दवा उसके लिए है। जब भी ऐसा महसूस हो कि पाँव में सूजन हो रहा है या पाँव लाल हो रहा है, पाँव में भारीपन लग रहा है, तो तुरंत आकर किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए और दवा का उपयोग करना चाहिए। ऐसे मौसम में अगर बुखार भी बहुत ज़्यादा 100 डिग्री से ऊपर चला जाए और काफ़ी समय तक रहे तो भी, और ठंड लग करके अगर बुखार आ रहा हो तो हो सकता है कि वो मलेरिया का प्रकोप हो।
0: अच्छा।
1: ऐसे में भी चिकित्सक से मिल लेना चाहिए
0: जी।
1: और दवा का उपयोग करना चाहिए
0: जी। मलेरिया फलेरिया, इसके अलावा और भी कोई बीमारियां हैं जो कि ऐसे समय में हो जाया करती
1: है? सांस फूलता है, अस्थमा का रोग बढ़ता है ऐसे मौसम में,
0: बीमारी ऐसे इस समय में
1: ज्यादा होती है।
0: वैसे दम फूलने वाली बीमारी में क्या करना चाहिए?
1: दम फूलने वाले बीमारी में ब्राइनिया नेट्रम सल्फ का उपयोग करना चाहिए।
0: सबसे बड़ी बात है कि परहेज जो है वो सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है,
1: निश्चित रूप से
0: किसी भी रोग व्याधि बीमारियों से बचने के लिए। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज्यादा विकसित रहे, ज्यादा अच्छी रहे, ताकि रोग बीमारी व्याधियों से हम बचते रहें, उसके लिए क्या क्या संभावित आहार विहार में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें?
1: सबसे पहले तो समय पर भोजन लेना चाहिए, और बरसात के मौसम में ठंडा या रखा हुआ भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी को कहीं भी जल एकत्रित करके रख करके उसको पीना नहीं चाहिए। पानी जब भी पिए तो या तो उबाल कर रख लें, उसी का उपयोग करें। खाना खाने के बाद तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, आधे घंटे तक खाना खाकर तुरंत सोना नहीं चाहिए।
0: अच्छा, दिन में भी?
1: दिन में भी, दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, रात में भी नहीं सोना चाहिए, खाना खा के कम से कम आधे घंटे के बाद।
0: टहलना वगैरह चाहिए, थोड़ा
1: 10 मिनट टहल के फिर आधे घंटे में पानी पी के तब सोना चाहिए।
0: प्राकृतिक जीवन जीना सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है। प्राकृतिक जीवन अगर हम जीते हैं तो ऐसे भी हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और हम कई प्रकार के रोग बीमारी व्याधियों से भी बच जाया करते हैं। मूल रूप से प्राकृतिक जीवन ही श्रेयस्कर होता है। और इसके बाद भी अगर कहीं कोई रोग बीमारी व्याधि मौसम के मुताबिक अगर आपको होता है तो कुछ रोग के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके कारण के बारे में अभी अभी जानकारी आपको दी डॉक्टर ऋषि रंजन जी ने, और संभावित जो होम्योपैथ का निदान है इस विषय पर भी प्रकाश डाला। एक रोग होता है, रोग या वो कहेंगे वो पॉक्स,
1: हाँ
0: वो भी तो यही समय है ना?
1: नहीं, वो मौसम जिस समय बदलता है उस समय का ही ये रोग पाया जाता है ज़्यादातर। तो उसके लिए भी एक दवा आती है वैरुलिनम 200 के, उसके 4 गोली की मात्रा एक दिन के बाद एक दिन 4 दिन दे देनी चाहिए। जब भी मौसम बदलता है उस समय में अगर ये दवा का उपयोग कर लिया जाए

0: तो पॉक्स होने की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है।
1: हमारे आम जो हमारे श्रोता भाई बहन जो रेडियो पर आपकी बातों को सुन रहे हैं, उन्हें एक स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय आप बताना चाहें इससे परे तो आप बता सकते हैं।
0: स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला सूर्योदय के पहले उठिए, समय पर अपना सारा कुछ करके कम से कम आधा घंटा व्यायाम जरूर करें और भोजन स्वच्छ जल का उपयोग करें।
1: ये मूल संदेश स्वाभाविक इसे अमल में लाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे,
0: निश्चित
1: है ना, सानंद रहेंगे। बड़ी अच्छी बात रही डॉक्टर रंजन प्रसाद जी अब हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोता भाइयों बहनों को मौसमी रोग उसके निदान विषय पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाल के अपनी जानकारी दी। श्रोताओं की ओर से ही बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी की बात थी। अभी पानी गर्म करके इस मौसम में पीने से बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है
3: जी जी।
2: और साफ सफाई का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और जो भी बातें हमें जानकारी में मिली कि कभी कभी बारिश में तो अक्सर हम लोग भी भीग जाते हैं मनु भाई
3: जी जी।
2: और भीगने के बाद काफी देर बाद कपड़ा बदलते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें खुद को बचाने के लिए एक तो जो खुजली की समस्या हो सकती है, दूसरी जो सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी की बातें थी, है ना। बहुत ही अच्छी बातों की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की।
3: मौसम जो आवे छे तो एक मौसम दूसरा टपिक ना आवे छे। मौसम में जे छे मौसम में सावधानी रखना चाहिए। और देखो ऐसी बातचीत तो होवे करते सुना बहन,
2: इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए पहले हमारे जो भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर ऋषि रंजन प्रसाद जी, उन्हें देते हैं धन्यवाद।
3: हाँ।
2: और हम लोग आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं
3: और सुनने छिमरासनी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: दुनिया।
1: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर एक सप्ताह के बाद आ गया दिन सोमवार का और कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। युवा साथियों, आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं जिससे आपको करियर में क्या चुनना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राज्य में यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, ढेर सारी जानकारियां हम विशेषज्ञ से दिलवाते हैं और लगातार सजग रहते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। एक बात हमेशा राजेश कहता है आपसे कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ लीजिएगा ना तो प्लेन स्टडी सीधे सीधे पढ़ने से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। जी हाँ, आप स्वव्यवसाय भी कर सकते हैं, आप सरकारी और निजी क्षेत्र में जाकर रोजगार भी तलाश सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है। बीएड एक हॉट केक है, बीएड हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, बीएड एक हॉट केक है। इसमें एक नया तो नहीं कहें लेकिन बहुत ही उम्दा कोर्स आया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पहले भी चर्चा की है, रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अवनीश रंजन को बुलाया है, बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि ये कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार में और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में, हम चाहते हैं कि कोई भी युवा इस बात से अनजान नहीं रहे कि अब टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए उसे चुनना चाहिए टेक्निकल पढ़ाई को। हम एक फोन नंबर भी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है, जो टेक्निकल पढ़ाई का एक हब है और मेडिकल यानी MBBS और PG जो है मेडिकल का, उसकी पढ़ाई के साथ साथ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई है जो यहाँ कराई जाती है सक्सेसफुली। पैन इंडिया टीचर्स हैं और पैन इंडिया अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो अनर्थक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें। कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आपके राज्य में मिल रही है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने एक नंबर लिया है जो आपके लिए है, जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001। एक बात और बताते चलें, तब हम डॉक्टर अविनीश रंजन को बुलाएंगे और पूरा उनके विषय में जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब यहाँ के लोग जो प्लेसमेंट सेल है ना, आपके रोजगार के लिए भी सजग है, उसमें आपको 100% असिस्टेंस देता है। बहरहाल डॉक्टर अविनीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुनने वालों को और पूरा परिचय आप अपना दीजिए।
2: मेरा नाम डॉक्टर अविनीश रंजन है और मैं फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे हूँ। और हमारे फैकल्टी में मुख्यतः दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक रिहैबिलिटेशन के जिसको पुनर्वास विज्ञान बोलते हैं, दूसरा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं।
1: डॉक्टर अविनीश, एक बात हम सबसे पहले अपने पूरे बिहार और झारखंड के युवाओं, उनके माता पिता के लिए पूछना चाहते हैं कि बीएड हॉट केक है, लेकिन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन ये कहाँ अलग है और कौन ज्यादा है? बीएड स्पेशल एजुकेशन कहाँ है, इसके बारे में बताइए।
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
1: तो एक बात तो यहाँ हम कह सकते हैं, हाँ अवनीश जी, आपके सामने या आपसे जो बातचीत हो रही है, जो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के बारे में बताया, कि हमें लगता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो एक कदम आगे है बीएड से, क्योंकि इसमें समग्र यानी वैसे बच्चे जो सही हैं, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनमें कमी है, उनके लिए, हाँ उनके लिए भी बीएड स्पेशल एजुकेशन में तैयारी करवाई जाती है, प्रोफेशनल तैयार करवाए जाते हैं, क्या कहते हैं
2: जी? अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो जब आप सिलेबस देखेंगे, करिकुलम इनका जो बना है, उसमें वो सारे पेपर्स हैं जो जनरल बीएड एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावे स्पेशल पेपर्स कुछ हैं जिसमें दिव्यांगता के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक क्रियाकलाप वो कैसा करते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, होम बेस्ड एजुकेशन जो गृह आधारित शिक्षा होती है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करेंगे उसके बारे में, ये सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करके और एक कम्पैक्ट प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसको हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, और ये कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं।
1: सोमवार का दिन है, कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं

0: डॉक्टर अविनेश रंजन, बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातचीत चल रही है। एकदम हॉट केक है, जी हाँ, बीएड स्पेशल एडुकेशन, इस पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं टेक्निकल क्षेत्र में, इसके अलावा एएनएम, जीएनएम, हाँ, फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करके आगे ला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अविनेश, एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को। और आपसे भी कह रहे हैं, जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज़ पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए और तब निर्णय लीजिएगा।
1: आज से, जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है, उससे पहले 2 साल के बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी तरीके से 2 साल के स्पेशल एजुकेशन बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो उसका ये कंपल्सन था कि हर एक बीएड कोर्स को इंटीग्रेटेड बीएड में ट्रांसफर किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड की पढ़ाई होगी, मतलब बच्चों का एडमिशन प्लस टू करने के बाद एडमिशन होगा, जिसको आईटेप बोलते हैं, जनरल बीएड को। आईटेप का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इजी टेप बोलते हैं ISITEP, जो स्पेशल बीएड के प्रोग्राम होते हैं, उसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंड स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये 4 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्स में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, अगर साइंस का लेना है, साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो साइंस के पेपर, आर्ट्स में करना है तो आर्ट्स के पेपर, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स के पेपर, साथ साथ बीएड के भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बीच में पढ़ाए जाते हैं। और ये ड्यूअल डिग्री वाला कोर्स है, मतलब जब आप इस इजी टेप या जिस इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी, मतलब 4 साल में 2 डिग्री लेके आप निकलेंगे।
0: बहुत खूब। हमने पहले कहा था ना युवा साथियों कि बीएड स्पेशल एडुकेशन बहुत ही उम्दा कोर्स है। आप राजेश की बात सुनते हैं और आज से नहीं, 20 साल से आपके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं, और जानकारियों के आधार पर बहुत सारे युवा रोजगार में आ गए, करियर में आ गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बीएड स्पेशल एडुकेशन बहुत ही उम्दा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हाँ, नंबर नोट करें जिस पर आप फोन करेंगे, 1800-121-0051, 1800-121-0051 और 9431899002। बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं अपने राज्य बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का हब वाला यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार। हम एक उन्नत और सुरक्षित बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अवनीश जी, 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, लेकिन समय आज के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं बचा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चे युवा यही चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए कहां कहां और किधर जा सकते हैं, हालांकि आपने अभी बताया है लेकिन फिर से बताइए।
1: मैंने पहले कहा कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे ICSE और CBSE के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
0: बहुत ही उम्दा व्यवस्था है रोजगार के लिए, इसके अलावा भी है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आने वाला एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं आज, आने वाला यानी आने वाला सोमवार जरूर हमें ट्यून कीजिएगा, और भी जानकारी देंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोजगार की और कहां कहां संभावनाएं हैं, और चर्चा करेंगे अगर जो आपके फोन कॉल आए और आपने जो हमसे सवाल पूछा। बहरहाल बीएड स्पेशल एडुकेशन एकदम हॉट केक है, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए। नंबर नोट करें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर है 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज का हब जमुआर सासाराम रोहतास में। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, सोमवार को मैं भी होऊंगा और डॉक्टर अविनीश भी होंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: सुना भाई,
4: और कुछ जानकारी मौसम संबंधी दे दे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 4 से 8 जुलाई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है। और कृषि क्षेत्र में जैसे कि पशुपालक भाई बहनों को गलाघोंटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। साथ ही साथ भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। पत्ती खाने वाली सुंडियों एवं फल छेदक कीटों को नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 EC का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। और साथ ही साथ खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देव की शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है।
3: हाँ, तो छिले सोना बहन कुछ मौसम सूचना और कृषि सलाह। हाँ। तब जैसे हमारा सनी एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुने छे,
4: धान उत्पादक किसानों को कुछ सलाह
3: अस जानकारी दे रहे छ शशांक त्यागी जी ने। हाँ,
4: आइए जानते हैं।
5: असिंचित अवस्था में धान की खेती करना, भूमि का समतल न होना, मध्यम नीची एवं गहरे पानी वाले क्षेत्रों में समुचित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करने पर जल निकासी भी की जा सकना, धान की खेती का वैज्ञानिक विधि से ना करना, रोग एवं कीड़ों का प्रकोप धान की उत्पादकता बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में कम होने का प्रमुख कारण है। बिहार में धान की खेती 4 प्रकार की भूमि पर की जाती है, जिसमें ऊंची जमीन पर जहाँ जल जमाव नहीं होता है वहाँ अति शीघ्र पकने वाली किस्में जिसमें प्रभात, तुरंता, रिछारिया, धन लक्ष्मी, साकेत 4, पूसा 221 आदि लगाई जाती हैं। ये किस्में करीब 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इनके बीज गिराने का उपयुक्त समय 1 से 15 जुलाई और रोपाई के लिए 20 से 25 दिन का बिछड़ा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थान पर 2 से 3 बिछड़े रोपें। बीज की दर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें।

मध्यम जमीन के लिए जहां सिंचाई की व्यवस्था हो और वर्षा होने पर 25 से 30 सेंटीमीटर जल जमा हो, आवश्यकता पर टन और इसकी उत्पादकता 14.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में धान का रकबा में अन्य राज्यों की तुलना में कम होने का प्रमुख कारण है। बिहार में धान की खेती चार प्रकार की भूमि पर की जाती है, जिसमें ऊंची जमीन पर जहां जल जमाव नहीं होता है वहां अति शीघ्र पकने वाली किस्में

बहुत ही प्यारा सा झूमर हम लोगों ने सुना, और हम लोग तकनीकी समस्या के वजह से धान उत्पादक किसानों को सलाह हम अपने किसान भाई बंधु को नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजने को है। अब हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंपस प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं JPSC PT परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की CBI जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुड़े 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक नए रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
3: इस मुख्य समारोह में झारखंड के सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों से लैंप्स प्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव इन्हीं बच्चों पर टिकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। परिसर के रख रखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं राइफल से निशाना साधा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातों में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताया।
5: सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की। पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने काफी गंभीरता से इस विषय को लिया है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली।
3: 14वीं JPSC सिविल सेवा PT परीक्षा के परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने परिणाम को रद्द करते हुए पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है।
6: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। बड़ा खतरा है। जेपीएससी एग्जामिनेशन क्रिमिनल ऑफेंस छात्रों के साथ जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
3: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और लंबित मुआवजे का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद रैयतों को वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोडरमा के डोमचांच में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास पर गहरी चिंता व्यक्त की।
7: प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है, ये तो ना तो झारखंड के लिए भला है ना झारखंड के लोगों के लिए भला है। जन विरोधी सरकार है और हम तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये स्वार्थों का गठबंधन है, जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं होता।
3: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के बैधकारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया। जांच पूरी होने तक इन विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
8: रिम्स 2 की बात ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक को यथावत रखे और आगे जब पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे, छानबीन करेंगे।
3: बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। हाल ही में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा जनप्रतिनिधियों को मिली कथित धमकी के सवाल पर IG ने कहा कि उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है।
9: इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में और जो मैटर रिलेटेड था उसके

0: संदर्भ में हमने एसएसपी साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी ली, इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ बड़े पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है, चाहे उनकी सुरक्षा लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो।
1: मौसम, राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। आज विशेष रूप से हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि रांची और गुमला सहित कई मध्य जिलों में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है। सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 438 बाल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंप्स प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुटे 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सुनिए लक्ष्मी पांडे की आवाज़ में लोकगीत। आरंभ में प्रस्तुत है देवी गीत।

लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। कलाकार थीं लक्ष्मी पांडे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:25 हो रहे हैं। 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद ज़िले की हलचल।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
1: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
4: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी।
0: गौरतलब है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही उम्मीद

0: बार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें 46,000 से अधिक मत मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रही थीं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एनडीए की ओर से भी इस सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए का किसी भी दल से मुकाबला नहीं है।
1: लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के भी आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनौती।
0: इधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी।
2: बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो सीट खाली हुई है और उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से ज्यादा वोट से जीतेगा। वोट में हम आगे रहेंगे, आरजेडी, कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़े।
0: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने तथा आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपये कर वसूली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला में उन्होंने बिहार जैसे राज्यों के लिए इस व्यवस्था में शिथिलता बरतने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी इस व्यवस्था पर असहमति जताई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आम लोगों पर इसका आर्थिक बोझ न्यूनतम रहे।
3: पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, जिसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस ओएसआर को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए नगद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के नगद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। अब 5,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी करने पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwani at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाला राष्ट्रनायक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बिहियापीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के पहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरगांव में पुलिस टीम को बंधक बनाए जाने के मामले में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 54 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवहर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 महिला समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने विशनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। SSP 21वीं वाहिनी बगा का 24वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर जिले के सभी 151 पैक्सों में आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में समितियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा पेश किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: किशनगंज के नए जिला पदाधिकारी के रूप में IAS अधिकारी नवीन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा प्रशासनिक, विकासात्मक और विधि व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा तथा सीमावर्ती जिला में प्रशासन और पुलिस के बेहतर समन्वय पर भी बल दिया।
3: सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो प्राथमिकताएं हैं उनका निष्ठापूर्वक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करें और आगामी जो बाढ़ है उसमें उसको लेकर जो भी प्रभावी नियंत्रण है उसी के लिए सब लोग लगातार हम प्रयास करेंगे और बाकी जो विकास के कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के जो भी प्राथमिकता है उनका निर्वहन करें।
2: मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीते दिनों जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संभावित बाढ़ एवं नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुहिया स्थित रेतुआ नदी के कटाव स्थल पर चल रहे कटाव विरोधी कार्यों की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बेनुगढ़ में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज भारत नेपाल सीमा पर फतेहपुर SSBBOP टेरागज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना और प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ राहत, सुरक्षा और विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इधर नेपाल क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण मेची नदी का जलस्तर बढ़ने से नेपाल भारत सीमा पर SSB के बक्सरविटा सीमा चौकी बाढ़ की चपेट में आ गई। SSB ने त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी जवानों, हथियारों, गोला बारू तथा सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभियान के दौरान 15 कर्मियों को सुरक्षित निकालकर अन्य सीमा चौकियों पर स्थानांतरित किया गया। सीमांचल की बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज चतेरहाट नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य शुरू हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की विस्तृत योजना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जून माह में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1 से 30 जून तक चले अभियान में 239 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, स्मैक और गांजा के साथ 2000 लीटर से अधिक विदेशी एवं देशी शराब बरामद की। अभियान के दौरान कई वाहन, 49 मोबाइल फोन, भारत और नेपाली मुद्रा तथा 83 मवेशी भी जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14,52,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। जिले में बीते दिनों बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सिपाही चालक पद की लिखित परीक्षा जिले के 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नशा मुक्ति सप्ताह के समापन पर खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई तथा लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले के 7 प्रखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। जीविका और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल की 132वीं बटालियन के तत्वाधान में खगड़ा स्थित BSF मुख्यालय के खेल मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। डायमंड जुबली वर्ष के अवसर पर आयोजित सह प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी। अधिकारियों ने युवाओं से खेलों के माध्यम से अनुशासन, भाईचारा और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किशनगंज में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया, दीप प्रज्वलित किया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिले में मोहर्रम शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की गई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 3,22,826 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के लिए 1050 टीमें, 2092 टीकाकर्मी और 315 सुपरवाइजर तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 7:52 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज के कार्यक्रम में सुनिए कुमारी सुवर्णा घोष की आवाज़ में सुगम संगीत। आरंभ में सुनिए रामधारी सिंह दिनकर का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी यहीं पर संपन्न हुआ। कलाकार थीं कुमारी सुवर्णा घोष। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म आवर्पन के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है मुस्तफ़ा जाहिद ने। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

रजनीगंधा में अगला गीत सुने फिल्म दम लगा के हईशा से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है पपोन ने, गीत के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और संगीत से सजाया है इसे अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म हाईवे से सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेल कूद पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। और खेल खिलाड़ी के नए अंक को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त मिलिंद गुंजन। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर कि क्या कुछ सहेजा है हमने आज के इस कार्यक्रम में खास आपके लिए। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की और साथ ही भारत इंग्लैंड T20 क्रिकेट श्रृंखला की। और कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा, हर बार की तरह हमारे सवाल आपके जवाब में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में। और खेल गतिविधि की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर से। फुटबॉल का खुमार इन दिनों पूरे विश्व में छाया हुआ है। फ्रांस और पराग्वे के बीच बहुत ही शानदार और जानदार मुकाबला हुआ, जिसमें फ्रांस की टीम ने 1-0 से पराग्वे को पराजित किया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वो टीम बन गई। खिताब के दावेदार फ्रांस की टीम को शुक्रवार की देर रात पराग्वे के खिलाफ जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये तो भला हो उनके स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे का, जिन्होंने दूसरे हाफ में अपने पैरों का जादू दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में तब्दील कर दिया। एम्बापे के 70वें मिनट में दागे गए गोल के दम पर फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से नॉकआउट कर लगातार चौथी और कुल 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांस की टक्कर अब अंतिम 8 में गुरुवार को मैसाचुसेट्स में फॉक्स फेरो में मोरक्को से होगी, जिसने कनाडा के सफर का अंत किया है। पराग्वे के खिलाड़ियों ने एम्बापे को खुलकर खेलने से रोके रखा, उन्हें भड़काने की भी कोशिश की। हालांकि 27 वर्षीय एम्बापे शांत बने रहे और मुस्कुराकर खेल का पूरा आनंद भी लेते रहे। यही वजह रही कि जब फ्रांस को पेनल्टी मिली तो उन्होंने बड़ी सहजता से पराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल को छकाकर उसे गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। फ्रांस को यह पेनल्टी तब मिली जब वीडियो रिव्यू के बाद डिएगो गोमेज को ट्रिपिंग का दोषी पाया गया। पूरे मैच के दौरान भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी रही, तापमान काफी बढ़ा रहा। इसके साथ ही ऐसे में एम्बापे ने शारीरिक रूप से मजबूत और रक्षात्मक मानसिकता वाली पराग्वे की टीम के खिलाफ मिले सबसे बढ़िया मौके को भुनाने में कोई गलती नहीं की। फ्रांस की जीत का अंतर अधिक हो सकता था, लेकिन ऑरलैंडो गिल ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे हाफ में एम्बापे के एक बेहतरीन प्रयास को नाकाम किया, उस्मान डेम्बेले को भी गोल करने से रोका। इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे अपने स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में। और अब खेल की अन्य खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को 7वीं बार महिला T20 विश्व कप पर कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को

17 गेंद शेष रहते 7 विकेट से करारे शिकस्त थी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में जीत का 100% का रिकॉर्ड भी कायम रखा है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने

दोनों बल्लेबाजों ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ फ्रंट फुट पर आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा। शॉर्ट गेंदों पर पुल और कट शॉट खेलकर रनगति भी कम नहीं होने दी। इस दौरान फोबे ज्यादा आक्रामक रही। उन्होंने डीन पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऑस्ट्रेलियाई पारी का पहला छक्का जड़ा। दूसरा छक्का रिवर्स स्वीप पर लिंसे स्मिथ की गेंद पर लगाया। डीन ने अपनी फिरकी में फंसाकर फोबे को पेविलियन भेजा। मुनी ने एलिसा पेरी 13 नाबाद के साथ 33 रन जोड़े। सोफी ने मुनी को आउट किया, तब टीम जीत से 11 रन दूर थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ही ओवर में जोन्स को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। लूसी ने उन्हें वाल के हाथों कैच कराया। एनाबेल सदरलैंड ने शानदार लय में चल रही डेनी वाट हॉज को चलता किया। इससे इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 32 रन हो गया था। पावर प्ले में दिए गए इन झटकों से इंग्लैंड को कप्तान नेट सेवर ब्रेंट 58 और फेवा कैंप 44 ने नाबाद पारियां खेलकर उबारे। दोनों 5वें विकेट के लिए 55 गेंदों में अटूट 80 रन की साझेदारियां भी निभाई। एलिस कैप्से ने 32 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ खिताब की बात करें तो 2010 में न्यूजीलैंड को 3 रन से उन्होंने शिकस्त दी और ये खिताब जीता। 2012 में इंग्लैंड को 4 रन से पराजित किया। 2014 में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 2018 में इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। 2020 में भारतीय टीम को 85 रन के बड़े अंतर से हराया। 2023 में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से पराजित किया और 2026 में एक बार फिर से इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। 302 रन सर्वाधिक टूर्नामेंट में इंग्लैंड की डैनी ने बनाए और उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 300 का आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाई। 14 सर्वाधिक विकेट टूर्नामेंट में भारतीय स्पिनर श्री चरनी ने 5 मैचों में 5.85 की इकोनॉमी से लिया। और अब बात कर लेते हैं विंबलडन की। जोश, जज्बा और जुनून की इंतहा, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर अभियान लगातार जारी है। उन्होंने विंबलडन के 106वीं जीत दर्ज कर महान रोजर फेडर की 105 जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नोवाक ने लगातार 9वीं बार साल के 3रे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरी ओर महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा भी अंतिम 8 में पहुंच गई है। नोवाक हालांकि कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर हैं। यहां 120 जीत का रिकॉर्ड 9 बार की चैंपियन महान खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा के नाम दर्ज है। 24 ग्रैंड स्लैम चैंपियन 39 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी ने रविवार को चौथे दौर में सटीक वाली शानदार ड्रॉप शॉट और दमदार क्रॉस कोर्ट विनर्स के दम पर रोमन सेफलोविन को पराजित किया। 7 बार विंबलडन के बादशाह साबित कर चुके 7वें वरीयता प्राप्त नोवाक ने रूस के 28 वर्षीय खिलाड़ी को 4 सेट में पराजित किया। 25वें खिताब की तलाश में उतरे नोवाक ने करीब 3.5 घंटे तक चले कड़े मुकाबले में 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से जीत दर्ज की। रैंकिंग में 125 स्थान का अंतर होने के बावजूद रोमन ने किसी तरह का दबाव नहीं दिखाया। इससे पहले वह 3 मैच 5 सेट में जीतकर यहां पहुंचे थे। पिछले साल सेमीफाइनल में हारने वाले नोवाक ने 2023 में यूएस ओपन जीतने के बाद से 10 बार ग्रैंड स्लैम में खिताब से वो वंचित रहे हैं। इस साल वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में भी पहुंचे थे, लेकिन कार्लोस अल्काराज ने उनका खिताब इस सब पर तोड़ दिया था। 10वीं वरीयता प्राप्त 29 वर्षीय कैरोलिना मुचोवा ने हमवतन और 2024 की चैंपियन बारबोरा क्रिजिकोवा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चेक गणराज्य की श्रेष्ठता और क्वार्टर में जगह बनाने के कड़े मुकाबले में मुचोवा ने 30 वर्षीय क्रिजिकोवा पर 7-5, 5-7, 6-3 से जीत हासिल की। मुचोवा ने करीब 3.25 घंटे के मुकाबले में जीत दर्ज करके 3री बार अंतिम 8 में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने हमवतन इवा जोविक को 3 सेट में 4-6, 6-3, 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है। उनका सामना बेलिंडा बेंसिच और कोको गफ के मैच की विजेता से होगा। और अब बात शतरंज की करते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर के क्रोएशियाई चरण में ब्लिट्सवर्ग के शुरुआती 9 दौर में सिर्फ 3.5 अंक ही हासिल कर पाए हैं। फ्रांस के अलरंजा फिरोजा ने चतुर चालों के दम पर एकल बढ़त बना ली है। शनिवार को अलीरेजा ने 9 में से 8 अंक हासिल किए। उन्होंने 20 अंक के साथ नोदिर बेग, अब्दुल सत्तोरोव और मैक्सिम बाचियर लागो पर 3 अंक की बढ़त ले ली है। प्रज्ञानंदा 15.5 अंक के साथ चौथे, जबकि विश्व चैंपियन डिगू केस 14 अंक के साथ फिलहाल 5वें स्थान पर हैं। अब बात कर लेते हैं भारत एक क्रिकेट टीम के अनौपचारिक टेस्ट मैच की। तेज गेंदबाज गुरनूर बरार की लहराती गेंदों के सामने श्रीलंका ए के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिरकार भारत ए ने मेजबान टीम को दूसरे और अंतिम अनौपचारिक टेस्ट मैच में रविवार को 10 विकेट से हरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि बरार दोनों पारियों में कुल 10 विकेट झटककर जीत के हीरो बने। बरार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके।
साई सुदर्शन 168 रन, देवदत्त पडिक्कल 94, सारांश जैन 70 और

तन ध्रुव जुरेल 53 की पारियों की बदौलत भारतीय ने पहली पारी में 543 रन का विशाल स्कोर बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल की। मैच के चौथे और अंतिम दिन खेल तेजी से आगे बढ़ा। पहली पारी में 366 रन बनाने वाली मेजबान टीम दूसरी पारी में 209 रन ही बना पाई। दूसरी पारी में भारत की ओर से बरार के अलावा सारांश जैन ने 2 जबकि आकिब नवी और यश ठाकुर ने भी 1-1 विकेट हासिल किया। भारतीय को 33 रन का लक्ष्य मिला। साई सुदर्शन और अमन मोखाड़े ने 6 ओवर 2 गेंद में बिना विकेट गंवाए लक्ष्य को हासिल कर लिया और पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम में जगह के लिए अब आकिब नबी के साथ बरार भी मजबूत दावेदार बन गए हैं। पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में पदार्पण पर भी प्रभावित किया था। वह टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे पर उन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। यह दौरा भारत के लिए बेहद सफल रहा। टीम ने इससे पहले दाम्बुला में त्रिकोणीय सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। अब श्रीलंका क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो सोनल दिनुसा 92 और कुशल मेंडिस 69 की छठे विकेट की 143 रन की साझेदारी से श्रीलंका ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली पारी में 9 विकेट पर 549 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी है। शनिवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान ने पहली पारी में 1 विकेट पर 58 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडम किंग ने 17 रन ही बना पाए। दिन का खेल समाप्त होने के समय जॉन कैंपेल 31 और केविन हॉज 6 रन बनाकर पिच पर डटे हुए थे। वेस्टइंडीज ने पहला टेस्ट एक पारी और 217 रन से जीतकर 2 मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से बर्खास्त करके उनकी जगह बाबर आजम को फिर से कमान सौंप दी है। बाबर की कप्तानी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी। मसूद को कप्तानी सौंपे जाने से पहले बाबर ने पाकिस्तान को 20 टेस्ट में से 10 में जीत दिलाई थी। पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है: बाबर आजम कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान ओवैस, इमामुल आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान ओवैस, इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, अवैस जफर, गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबेद शाह। अब और खेल के कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। इसमें एशियाई खेलों में इंग्लैंड में महिला टी20 विश्व कप में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद हरमनप्रीत कौर को एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम के कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है। महिला चयन समिति ने जापान के आइची नागोयो में इस साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले खेलों के लिए मंगलवार को 15 सदस्य संभावित टीम की घोषणा कर दी है। टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, सेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋषा घोष और जी कमलिनी, विकेट कीपर भारती फूलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदनी शर्मा, ये टीम होगी। और साथ ही अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने करियर के बाकी समय के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अस्थायी अभ्यास केंद्र बनाने का फैसला किया है। बीसीसीआई के अनुसार पांड्या बेंगलुरु में स्थानांतरित हो चुके हैं और उन्होंने सीओए के पास एक घर किराए पर लिया है। सूत्र बताते हैं कि पांड्या अपने करियर के बाकी समय में सीआईओ को स्थायी ट्रेनिंग केंद्र बनाने वाले पहले प्रमुख मौजूदा भारतीय क्रिकेटर होंगे। 32 वर्षीय पांड्या फिलहाल जांघ की चोट से उबर रहे हैं और मुंबई में रोजाना ट्रेनिंग के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करना पड़ता था, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। यह तो थी खेल जगत की ताजा तरीन खबरें हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में। और श्रोताओं, हम आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ खेल जगत के रोचक खबरों की तरफ।

खेल जगत के रोचक खबरों में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने खुलासा किया है कि उन्होंने बेन स्टोक्स से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। मैकुलम ने कहा कि मैंने स्टोक्स को मनाने की कोशिश की थी पर वह मन नहीं बना पा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान संन्यास की घोषणा करने वाले स्टोक्स को मैकुलम ने शानदार कप्तान और प्रेरणादायी नेता बताया। उन्होंने कहा कि स्टोक्स के साथ काम करना मेरे लिए यादगार अनुभव रहा और वह फ्रंट से टीम को लीड करते हैं, इसलिए उन्होंने एक बार कोशिश की है कि स्टोक्स एक बार फिर अपने उस संन्यास के फैसले पर विचार करें। और अब बात श्रीसंत की। केरल क्रिकेट संघ यानी KCA ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एसोसिएशन पर पिछले साल लगाए गए 3 साल के प्रतिबंध को बुधवार को हटा लिया है। यह प्रतिबंध संघ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण लगाया गया था। KCA के बयान में कहा है कि अपने विशेष आम बैठक में प्रतिबंध हटाने का उन्होंने फैसला किया। बयान में यह भी कहा गया, यह फैसला क्रिकेटर के बिना शर्त माफी मांगने और KCA के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताने के बाद किया गया। बयान के अनुसार श्रीसंत पर यह प्रतिबंध पिछले केरल क्रिकेट लीग यानी KCL के मुकाबलों से पहले लगाया गया था। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान से, जिस तरह से एक खिलाड़ी ने विदा ली है उसकी। 2 दशकों तक अपने जादुई पैरों से फुटबॉल की लय तय करने वाले क्रोशियाई मेस्ट्रो लुका मोड्रिक की विश्व कप यात्रा का भावुक अंत हो गया। जब अंतिम सीटी बजी तो 40 वर्ष के इस महान मिडफील्डर ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अपना सिर झुका लिया। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गले लगाया। स्वर्णिम युग की विदाई का यह दृश्य यादगार बन गया। साल 2006 में अपना पहला विश्व कप खेलने वाले मोड्रिक का यह 5वां 2014, 2018, 2022, 2026 टूर्नामेंट था। पुर्तगाल के खिलाफ उतरते ही उन्होंने विश्व कप में अपने 23 मैच पूरे कर लिए, जो इटली के महान डिफेंडर पाओलो माल्डिनी के रिकॉर्ड के बराबर हैं। वह इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में घाना के खिलाफ निकोला ब्लासिच को गोल का पास देकर मोड्रिक विश्व कप इतिहास में असिस्ट करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे। महान अगर हम बात करें तो महज 30 लाख से थोड़ी सी ज्यादा आबादी वाले छोटे से देश क्रोएशिया को फुटबॉल की महाशक्ति बनाने का श्रेय मोड्रिक को ही जाता है। उनके कप्तानी में क्रोएशिया ने 2018 में पहली बार विश्व कप के फाइनल का सफर तय किया था, जहां उन्होंने गोल्डन बॉल जीती और 2022 में ब्राजील को बाहर कर कांस्य पदक जीता। मेसी और रोनाल्डो के दबदबे के बीच साल 2018 में बैलन डी'ओर जीतने वाले वे दुनिया के इकलौते खिलाड़ी रहे। खास मैदान रहा जब अगर बात करें क्लब स्तर पर, रियल मैड्रिड को 6 चैंपियंस लीग खिताब जिताने वाले और फिलहाल AC मिलान के लिए खेल रहे मोड्रिक के लिए टोरंटो का मैदान खास था, क्योंकि यहां उत्तरी अमेरिका की सबसे क्रोशियाई आबादी रहती है। इस तरह से इस खिलाड़ी ने अंतिम विश्व कप से अलविदा लिया। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें हमारे स्तंभ खेल जगत की रोचक खबरों में। और श्रोताओं आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में।

स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स कॉर्नर में हम बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 के अब तक हुए कुछ मुकाबले की, साथ ही आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस स्पोर्ट्स कॉर्नर में भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 मुकाबले खेले गए उसमें जिस तरह से सूर्यवंशी ने पदार्पण मैच में ही अपने इरादे जाहिर किए इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर से ही, क्योंकि फिलहाल फीफा का जो बुखार है वो पूरे विश्व में फुटबॉल प्रेमियों पर छाया हुआ है। इसमें शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं केप वर्दे को, जो चैंपियन है मेसी की टीम उसे हराने में किस तरह से वहां पर मेसी की टीम को मशक्कत करनी पड़ी उसकी एक वानगी बताते हैं। फीफा विश्व कप में अपने जोश जज्बे और लाजवाब खेल से फुटबॉल प्रेमियों को हैरान करने वाली टीम केप वर्दे के सेंटर बैक डिनी बोगेंस ने 111वें मिनट में अपने गोल के सामने बेहतरीन हेडर लगाया जो उनके अपने ही गोल में चला गया। अर्जेंटीना के खिलाफ शुक्रवार की रात राउंड ऑफ 32 में यह आत्मघाती गोल निर्णायक साबित हुआ। बोर्गेस एक ही पल में अपने देश के लिए विलन बन गए। इसके साथ ही मौजूदा चैंपियन टीम 3-2 की जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अब अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा जिसने अटलांटा में पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। पूरे मुकाबले में इस टीम ने खिताब के दावेदार अर्जेंटीना को नाको चने चबवा दिए। अतिरिक्त समय तक चला मुकाबला जीतने के बाद लियोनेल मेसी और उनकी टीम के माथे पर छलके पसीने उनकी राहत की गवाही दे रहे थे। इसके साथ ही विश्व कप में छिपे रूस्तम केप वर्दे का शानदार अभियान खत्म हो गया। हार के बावजूद अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इस द्वीप देश ने विश्व कप के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया और पूरे फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में अपनी अमिट जगह बना ली। बात करें तो इस शानदार मुकाबले में मेसी की हम अगर चर्चा करें उससे पहले इस केप वर्दे टीम की चर्चा करनी बेहद जरूरी है। निर्धारित समय में मेसी ने टीम को बढ़त दिला दी। उन्होंने 29वें मिनट में ही गोल के सामने मिले लिसांड्रो मार्टिनेज से मिले क्रॉस को बाएं पैर से कंट्रोल किया, फिर नेट के ऊपरी हिस्से में बेहतरीन शॉट लगाकर गोलकीपर को छकाते हुए टीम को बढ़त दिला दी। यह विश्व कप में मेसी का 20वां गोल रहा। 59वें मिनट में केप वर्दे के रयान मेंडेस ने के पास पर डुआर्टे ने गेंद पर कब्जा करते हुए मुश्किल एंगल से एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। लिसांड्रो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से बढ़त दिला दी। इंजरी टाइम खत्म होने वाला था और अर्जेंटीना की जीत तय लग रही थी, पर तभी केप वर्दे के लिए सिडनी लोपीज कब्राल सानिक समेदो की मदद से बराबरी का गोल दागकर अर्जेंटीना के समर्थकों को स्तब्ध कर दिया। लग रहा था कि फैसला पेनल्टी शूट आउट से ही होगा, पर बोर्गेस के आत्मघाती गोल ने अर्जेंटीना को अंतिम 16 का टिकट दे दिया। मेसी की बात कर लेते हैं तो मेसी ने केप वर्दे के खिलाफ पहला गोल करके विश्व कप का रिकॉर्ड 20वां गोल किया। फ्रांस के किलियन एम्बापे उनसे 2 गोल पीछे हैं। मेसी ने कभी गोल्डन बूट नहीं जीता है। विश्व कप 2022 में 7 गोल करके वह एम्बापे से 1 गोल पीछे थे, जबकि 2014 में 4 गोल करके संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थे। अगर टूर्नामेंट के बाद शीर्ष पर टाई रहता है तो यह देखा जाएगा कि कितने गोल में मदद किए। फिर दूसरा टाई ब्रेकर होगा कि मैदान पर किसने कम समय बिताया है। एम्बापे गोल की मदद के मामले में मेसी से 2-0 से आगे हैं। इस साल मेसी ने 7वां गोल दागा है। हालांकि गोल्डन बूट की दौड़ में एम्बापे उनसे 1 गोल ही पीछे हैं। पिछले 8 विश्व कप मैचों में मेसी 12 गोल कर चुके हैं। मेसी का विश्व कप में लगातार गोल का सिलसिला 2022 में खिताबी जीत से चला रहा है। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के 7 गोल, किलियन एम्बापे फ्रांस के 6 गोल उनके खाते में हैं। इलिंग हॉलैंड नॉर्वे के 5 गोल उन्होंने किए हैं। हैरी केन इंग्लैंड के 5 गोल उन्होंने भी दागे हैं। उस्मान डेम्बेले फ्रांस के 4 गोल उन्होंने किए हैं और विनीसियस चू ब्राजील 4 गोल इनके खाते में हैं। और अब बात कर लेते हैं इस तरह से आज के मुकाबले की, आज जो मुकाबला खेला जाना है उस आज के बड़े मुकाबले की अगर हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने विश्व कप को छोड़कर हर एक खिताब जीता है। विश्व कप की ट्रॉफी उठाने का उनके पास से आखिरी मौका होगा। अंतिम 16 में पहुंच चुकी उनकी टीम पुर्तगाल की आज स्पेनिश टीम के खिलाफ अग्नि परीक्षा होगी। दोनों पड़ोसी देशों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों को आइबेरियन डर्बी के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे पास वाली टिकी टाका शैली में खेलने वाली स्पेन की टीम ने कोई गोल नहीं गंवाया है। रोनाल्डो और उनकी टीम के लिए स्पेन के अभेद्य किले को भेदना सबसे बड़ी चुनौती होगी।
पुर्तगाल भले ही अजय रहा है पर वह सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाया है। 41 वर्ष से रोनाल्डो भी पूरी तरह से रंग में नहीं है। वह 3 गोल ही कर पाए हैं स्पेन के खिलाफ विश्व कप में। अगर पुर्तगाल को पहली जीत दर्ज करनी है तो रामोस, ब्रूनो और जुआओ को रोनाल्डो का साथ देना होगा। सह मेजबान अमेरिका और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल के लिए रोमांचक जंग होने की उम्मीद है। अमेरिका की निगाह 22 साल बाद अंतिम 8 में पहुंचने की होगी। दोनों टीमें 12 साल बाद एक बार फिर से अंतिम 16 में टकराएंगी। वर्ष 2014 में बेल्जियम ने अमेरिका को 2-1 से हराया था। अमेरिका की टीम उस हार का हिसाब बराबर करने के लिए उतरेगी। शानदार फॉर्म में चल रही अमेरिकी टीम के लिए रोमेलू बुकाकू और यूरी को रोकना आसान नहीं होगा। अमेरिका को बालगुनू के बिना खेलना होगा जो रेड कार्ड के चलते एक मैच के लिए प्रतिबंधित हैं। अगर हम बात करें एम्बापे की, एम्बापे बहुत शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं और मेसी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नॉकआउट में एम्बापे अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 अलग अलग विश्व कप के नॉकआउट राउंड में कम से कम 3 गोल किए हैं। अन्य 3 खिलाड़ियों ने 2-2 बार ऐसा कारनामा किया है। कुल मिलाकर एम्बापे नॉकआउट में रिकॉर्ड 11 गोल कर चुके हैं जो ब्राजील के रोनाल्डो से 3 अधिक हैं। एम्बापे विश्व कप में करियर का 19वां गोल कर लियोनेल मेसी 20 के सर्वाधिक गोल दागने के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में एम्बापे और मेसी दोनों के साथ साथ गोल हैं। वे गोल्डन बूट की दौड़ में सिर्फ पर कायम हैं। एम्बापे ने पिछले विश्व कप में भी यह पुरस्कार जीता था। एम्बापे की टीम ने जिस तरह से जीत हासिल की है और उन्होंने जीत के बाद पराग्वे को पराजित किया 1-0 से, इस जीत के बाद एम्बापे ने कहा कि हम जानते थे कि इस मैच में क्या होने वाला है। हम भी आक्रामक हो सकते थे लेकिन हम जानते हैं कि कैसे खेलना है। हमें पता है कि आक्रामक फुटबॉल कैसे खेलते हैं और किस टीम के खिलाफ खेलते हैं। शायद वे सोच रहे थे कि हम सूट बूट में आएंगे लेकिन हम तैयार थे। देखिए, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है और एम्बापे को उकसाने की भी कोशिश तमाम तरह से की गई कि किसी तरह से वो उकसावे में आ जाएं, और जब खिलाड़ी इस तरह से उकसावे में आते हैं तो फिर उनके खेल पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है और फुटबॉल के मैदान में आपके लिए रेड कार्ड आपका इंतज़ार भी करती है। अगर राउंड ऑफ 16 का भी कार्यक्रम पर नज़र दौड़ाएं तो आज मुकाबला है ब्राज़ील नार्वे के साथ भी भिड़ेगा और मेक्सिको का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। 7 जुलाई की बात हम करें तो पुर्तगाल स्पेन के साथ मैच है, अमेरिका का बेल्जियम के साथ मैच है और 8 जुलाई की बात हम करें तो अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा और स्विट्जरलैंड कोलंबिया और घाना में जो टीम जीतेगी उसके खिलाफ दोनों का मुकाबला होगा। ये अभी सुपर 16 के मुकाबलों की हम बात कर रहे थे। लेकिन इस विश्व कप में केप वर्दे की टीम ने जिस तरह से सबको चौंका दिया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है कि कैसे फुटबॉल विश्व कप में छोटी से छोटी टीम बड़ा असर डाल सकती है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भारत इंग्लैंड T20 क्रिकेट श्रृंखला की, और इसमें दूसरा T20, पहला मैच बारिश से धुल गया था, दूसरा T20 मुकाबला भारत को गंवाना पड़ा है और इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की है। लेकिन इसमें वैभव सूर्यवंशी बिहार के इन्होंने डेब्यू किया है और शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि केवल 14 रन बनाए लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 2 छक्के शानदार जड़े, वो दर्शाता है कि किस तरह से फियरलेस क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी खेलना जारी रख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भी। भारत की सीनियर टीम में चयन होना और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वैभव सूर्यवंशी निश्चित रूप से भारत के भविष्य के सितारे साबित हो सकते हैं और अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। अब इंतज़ार करना होगा कि क्या जब उन्हें मौका और मिलता है तो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारी नज़र उस पर लगातार बनी रहेगी, साथ ही नज़र बनी रहेगी फीफा विश्व कप 2026 की। हर खबर हम अपने श्रोताओं तक पहुँचाएंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से और फिलहाल हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे फीफा विश्व कप 2026 की। तो फिलहाल आज के स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं इतना ही। अब हम आपको ले चलते हैं वहां जहां लेते हैं आपके खेल गन की परीक्षा, हमारे स्तंभ, हमारे सवाल आपके जवाब में। हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तैयार बैठेंगे हमारे सप्ताह के 2 प्रश्न नोट करने के लिए। तो नोट कीजिए, हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है। पहला प्रश्न एक बार फिर से, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है। हमारे सप्ताह का दूसरा प्रश्न है मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। इसके सही हल यानी सही जवाब लिखकर हमें 7 दिनों के अंदर भेज दें। हमारा पता है हमारे सवाल आपके जवाब
कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर पिन कोड 812001। और आप में मेल से भी अपने सही जवाब भेज सकते हैं श्रोताओं। हमारा मेल एड्रेस है phiarbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। और बारी पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल, सवाल के सही जवाब और सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों की। तो पिछले सोमवार को हमने आपसे पूछा था कि इस खेल में स्क्रम शब्द प्रयोग होता है। सवाल एक बार फिर से सुन ले श्रोताओं कि पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था किस खेल में स्क्रम शब्द प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है रग्बी। हमारा दूसरा प्रश्न था शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन है। इसका सही जवाब है रानी। जी हां, सवाल यह था कि शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन है और इसका सही जवाब है रानी। इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं शकरुल्ला चक कवाले मैदान हुसैनाबाद भागलपुर से शमशाद खान, अली खान, वली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आजम खान, अरबाज खान, अनस खान, मुजाहिदपुर प्रपटला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिद अंसारी, कादिर नूरुलहदा, जिशान अकरम, एम के नाज, मनिहारी मस्जिद्दीन पूरा टोला से मजहर खान, फैयाज खान, अनस खान, गुड़िया, नाहिद पाकिजा और मुस्कान, अकबरनगर सुल्तानगंज से अशोक कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, आदर्श गुप्ता व रंजीत गुप्ता, पीरपैती दो पुबारी टोला से मोहम्मद जलील, संजीदा खातून व आसमीन, लालचौक भागलपुर से विष्णु कुमार चौधरी, गायत्री देवी, सागर व बादल, ग्राम बछौता जिला खगड़िया से ब्रजेश निराला, रूपाश्री राज, भानु, पुष्पा, डुग्गू व तेजस, बड़ी खजरपुर मस्जिदलेन भागलपुर से भाई गुलफराज आलम, बेगम समारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय आवासीय परिषद आशियाना दीघा रोड पटना से अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, नबा कौसर, साजली ममसी व शादाब अहमद, नजीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर भागलपुर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर व तारिक अनवर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मिका वीरक, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक व हरदेव मिका, वानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हुमायूं विश्वकर्मा व योगिता विश्वकर्मा। आप सभी श्रोताओं को सही जवाब भेजने के लिए खेल खड़ी की ओर से ढेर सारी बधाइयां। और अब तो हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगला सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर हमारे आपकी मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खेल खड़ी की पूरी टीम के साथ हमें यानी मिलिंद गुंजन को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरे ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
7: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार

0: ये रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश

0: Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीप रौन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब्बे वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے۔ مرکز

0: रावत, राज्यसभा के रुकन शिमक भट्टाचार्य और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मौजूद शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सदगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्दबुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरूरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुज़रा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और CEO नंदकुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉ गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01132481 2371 7171 7176। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। POJK में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि POJK के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों

0: उन्होंने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है।
2: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिय भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद खानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला खां अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जसद खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोग के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। ये सोग सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सिएटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड नॉर्वे मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ सौराष्ट्र मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक
1: है, ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है।
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका। तो रिटर्न कॉल, उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं, आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
1: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक, जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए, आपको बता देता है कौन सा क्या आता है, उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं। तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया है कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है। वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है। तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए। अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?

0: काफी मटेरियल है उस पे, काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसमें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
2: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
2: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
2: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश,
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी नमस्कार, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था
1: जी
3: कि जिस बहुत सारे केस में उसको लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
4: सभी को नमस्कार
1: जी,
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा, तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप?

0: हम जो डाउनलोड करे करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पे कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
2: एक बार फिर से सवाल करें,
1: फिर से सवाल करेंगे आप?
2: कट गया शायद, उन्होंने उनका
1: डिस्कनेक्ट
2: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ?
1: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
2: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
3: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। नमस्कार
3: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
1: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
3: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
1: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
2: जी,
1: स्टूडेंट्स
3: जी सर।
1: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है, तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, IIMs के, मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं।

0: उड़ीसा में, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नमस्कार, मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है, और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना, वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या फीचर फोन से किया, उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
3: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस

0: रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा इसका? जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
2: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एक आध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
2: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सुनिए अली अकबर खान साहब का सरोद वादन रागश्री में।

राग श्री में आप सुन रहे थे अली अकबर खान साहब का सरोदवादन शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म जरा हटके जरा बचके इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। गंगा विहार रानी तालाब भागलपुर से नंद किशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वीटी, सुरुचि, रोली, पायल, अनवी, आशी और ईशु बाबू ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। वहीं बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। लालूचक भागलपुर से विष्णु कुमार चौधरी, श्रीमती गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता देवी, अंजलि और घर के सभी लोगों ने।

पसंद आपकी में अगले गीत हमने लिया है फिल्म पेडी से। पेडी के इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहित चौहान ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और इस गीत के बोल लिखे हैं नकीब आलम ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा, करीना और सूरज ने। अनिरुद्ध चौक मधेपुर से भाई प्रेमचंद ठाकुर, रानी, मीना ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि, संजू, सुभाष, भवानी और लवकुश। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, जमालुद्दीन नेपाली, फायजा, फातिमा, यूसुफ और हमजा ने। ग्राम बगड़ुआ से पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनमिका और उत्कर्ष नेताम ने।

पसंद आपकी में अगला गीत सुने फिल्म स्त्री 2 से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है विशाल मिश्रा और सचिन जिगर ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने और इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने, कटोरिया से शहादत अली, मलिक सालिक शहादत, सिद्रा शहादत, शाहिना परवीन, चंपानगर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर, बीकनपुर भट्टा रोड से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी यशा, बांका से रमेश शाह और परिवार के सभी सदस्यों ने, गोराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन, नरेश नंदन, ततारपुर से नबा कौसर, अरशान अहमद, जरीश अहमद और हाजिक अहमद ने।

पसंद आपकी के इस कार्यक्रम में अगली फरमाइश है आप सबकी। राजस्थान के जिला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई एवं प्रभुलाल बागजी। साहिबगंज भागलपुर से छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम, डॉक्टर सुब्रत कुमार मंडल। नाथनगर भागलपुर से हिबा फुजैल, दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फुजैल और जुबैर अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर विरक, चेतक विरक और हरदेव विरक। भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमायू विश्वकर्मा और योग्यता विश्वकर्मा ने। आपने फरमाइश की है फिल्म एनिमल के किसी भी गीत को सुनने की, तो आइए सुनाते हैं आपको फिल्म एनिमल से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत सुने। इस गीत को संगीत से सजाया है सिद्धार्थ और गरिमा ने।

कार्यक्रम के आखिर में ये गीत हमने लिया है फिल्म अनवर से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है क्षितिज तारे और शिल्पा राव ने। गीत के बोल लिखे हैं हसन कमाल ने और संगीत दिया है मिथुन शर्मा ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। ग्राम बबूरा धनकुंड से मोहम्मद परवेज आलम, हुस्न आरा स्वीट मोहम्मद मरियाज, अनाया परवेज, आतिफ परवेज ने। मानसी से अनिल गौरव, कविता मदान। बड़ी गोविंदपुर जमालपुर मुंगेर से मुकेश कुमार, परवीन, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय, प्रफुल्ल, मोहन और हितेश ने।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार।

0: होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary.